FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज मंगलवार है शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि। तदनुसार 25 अगस्त सन 2026 इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 33 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा,

0: सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल कुंडधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की जय हो।

आपदाम पर हरता राम दाता राम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि हम। राम का नाम बड़ा आनंद करने वाला है।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई है। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती,

थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा।

कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती, आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना कमल कुमार, भीमसेन जोशी, लक्ष्मी शंकर, अनूप जलोटा और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक छोटी कहानी बताई जाती है। जब वे आनंदपुर में थे, एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तब एक स्वस्थ दिखाई दे रहे भिक्षुक ने उनके पास आकर कुछ पैसे मांगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक भी पाई देने से इनकार किया और भिक्षुक से कहा, पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, पर तुम्हें भोजन जरूर मिल जाएगा। यदि तुम्हें भूख लगी है तो लंगर में जाकर खाना खा लो। तुरंत बाद गुरु गोविंद सिंह ने एक शिष्य को बुलाकर उसके हाथ में सोने की कुछ मुद्राएं रखकर कहा, मैं जो पता तुम्हें बताता हूँ उस पते पर जाकर ये मुद्राएं दे देना। ये सुनकर गुरु गोविंद सिंह के अनेक शिष्य चकित हुए। जिसमें थोड़ी सी शक्ति जागृत हुई उसने पूछा, गुरुदेव, अभी अभी आपने आए हुए भिक्षुक को एक पाई भी देने से इनकार किया और आप एक ऐसे आदमी के घर सोने की मुद्राएं भेज रहे हैं जिसने आपसे मदद तक मांगी ही नहीं। कृपा करके इन दोनों बातों का अर्थ समझाएं। गुरुदेव केवल हंसे और जिस आदमी को सोने की मुद्राएं भेजी थी उसे गुरुदेव ने बुलाने की आज्ञा दी। वो आदमी उपस्थित हुआ, उसका मुख मुरझाया हुआ था, गाल पिचक गए थे और आंखें निस्तेज बन गई थी। उस आदमी से चला भी नहीं जाता था। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत दिनों से भूखा था, फिर भी वो अपनी दीन अवस्था को प्रकट करना ही नहीं चाहता था। सीना तान कर चलने का प्रयत्न कर रहा था। गुरुदेव ने उसे कहा, बेटे, तुम तो यहाँ अपरिचित नहीं हो, अपने ही भाइयों के पास हो, तुम अपना हाल संक्षेप में सुनाओ। उस आदमी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे क्या छिपाऊं? मैं, मेरी सुंदर पत्नी और मेरे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। हमने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम न मिला। किसी के पास जाकर मांगने के लिए तो हमारे होठों पर ताले लगे थे। आज सुबह अत्यधिक कमजोरी के कारण हम दोनों पति पत्नी ने खुदकुशी करने का निर्णय लिया। हमारी मृत्यु के बाद हमारे बच्चों पर आपकी कृपा रहे, ये प्रार्थना भी हमने की। क्या आपने ये प्रार्थना सुनी? क्योंकि उसी समय हमारे घर के दरवाजे पर आपका संदेशवाहक हाथ में सोने की मुद्राएं लेकर खड़ा था। हमारे लिए वे केवल सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक नए जीवन का संदेश था। सभी शिष्य इस कथन को सुन रहे थे और समझ रहे थे। गुरु ने कहा, देखा तुमने, इस परिवार ने इतने कष्ट सहे, फिर भी अपने दुख को दिल में छिपाए रखा और किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया। मैंने उसी की मदद की जिसको वास्तव में मदद की जरूरत थी, और जरूरत भी ऐसी कि यदि मैं उन्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं भिजवाता तो वो पूरा परिवार असमय काल के गाल में चला जाता। दूसरी तरफ वो भिक्षुक था जो मांग रहा था और जिसे वास्तव में जरूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और परिश्रमी है किंतु फिर भी दुर्भाग्य से असहाय और अकेला है, ऐसे व्यक्तियों का आर्तनाद ईश्वर अवश्य सुन लेता है। ईश्वर ही

0: नहीं, हर सच्चा ईश्वर भक्त उसकी आवाज सुन लेता है, जैसे कि मैंने उस मृत्यु को वरण करने जा रहे उस परिवार की बात सुन ली। ऐसे लोगों की मदद करना सबसे बड़ी मानवता है।
1: बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विचार बेसहारा के सहारे, आलेख आचार्य भगवान देव का था और वाचन स्वर था अंजू पांगती का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नवविवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

अभी आप सुन रहे थे संभेश्वर में श्री रामचरित मानस गान। संगीतकार थे सतीश भाटिया। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा पशुओं में पाचन संबंधी रोग और उपचार। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीतों का। 7:58 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता आज सुनेंगे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, श्रीजी बरसाना, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया और प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी वार्ता विशेष वार्ता भारतीय अस्मिता का अधम जयघोष वंदे मातरम। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा और आपसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। संयोजन एवं प्रस्तुति होगी ओम प्रकाश सिंह की। आलेख स्वर एवं प्रस्तुत सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का। 10 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम का आंखों की सामान्य बीमारियां और निदान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल। आपसे भेंट करेंगी उषा पांडे और आशु रावत।

ग्यारह बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 12 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। 12 बजे आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज कलाकार होंगे सुरेश चंद्र गोस्वामी। आपके साथ संगत कलाकार होंगे बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर ब्रिभूषण शर्मा और ढोलक पर योगेश शर्मा, साथ ही पर्कशन पर कृष्ण कुमार। 1:15 पर बहनों कार्यक्रम होगा कार्यक्रम बनिता लोक। आज चर्चा का विषय रहेगा शिव आराधना का पर्व श्रावण मास। साथ ही राष्ट्रीय नित्यदान पखवाड़ा विषय पर आप सुनेंगे चर्चा। वार्ता रहेगी श्रावण मास के तीज त्योहार और परंपराएं। वार्ताकार होंगी रजनी खंडेलवाल। 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 2:30 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं में पाचन संबंधी रोग एवं निदान विषय पर चर्चा करेंगे। पशुओं में होने वाले सामान्य उदर रोग इस प्रकार से हैं। पहला है अफरा। जुगाली करने वाले पशु अधिक गीला हरा घास या चारा खाने से उनके पेट में दूषित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, अमोनिया आदि एकत्रित होकर उसका पेट तान देती हैं, जिससे पशु बेचैन हो उठता है। इस रोग का कारण है दूषित आहार, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का सेवन, खाने में एकाएक परिवर्तन, व्यायाम या कार्य के बाद एकदम ठंडा पानी पीना, गले में रुकावट, पेट की मांसपेशियों की खिंचाव शक्ति कम होना आदि इस रोग का कारण है। र्यूमन में गैसें भरकर उसका फूल जाना, हाथ से दबाने पर ढोल जैसी डमडम की आवाज सुनाई देती है, श्वास लेने में परेशानी होती है, पशु खाना पीना तथा जुगाली करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, पशु के मुंह से लार गिरती है, पशु बार बार उठता बैठता है तथा बेचैन रहता है, अंत में गोबर व पेशाब निकलना बंद हो जाता है। इस रोग की चिकित्सा हेतु गंभीर अफरा में तारपीन का तेल व मीठा तेल 30 मिलीलीटर तारपीन का तेल तथा 400 मिलीलीटर मीठा तेल सीधे रूमन में प्रवेश कराया जाता है। पाचन संबंधी दूसरी व्याधि है र्यूमेन का गुम होना। अधिक सूखे कड़े और लंबे खाने में कभी कभी पशु का र्यूमेन तनकर गुम्बा बन जाता है। अफरा की भांति इसमें गैसें नहीं बनती हैं, लेकिन तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कड़े तथा सूखे चारे, अधिक खाना, अतिशीघ्र बिना चबाए खाना, र्यूमेन में पानी का अभाव, र्यूमेन की दीवारों में संकुचन का अभाव तथा विषैले पदार्थों के शोषण से र्यूमेन की दीवारों का पक्षाघात आदि इस रोग के कारण है। रोग होते ही पशु चारा दाना तथा जुगाली करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। कब्ज के कारण इसमें बेचैनी होती है। बाईं कोख तनी तथा बाहर व नीचे की ओर ऊपरी दिखाई देती है। पशु अपनी पीठ उठाता है, दांत पीसता है तथा थोड़ा थोड़ा बार बार गोबर करता जाता है। इसकी चिकित्सा हेतु पेट साफ करने के लिए दस्तावर नुस्खे दिए जा सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड 180 ग्राम, मैग सल्फ 180 ग्राम, शीरा 450 ग्राम। र्यूमेनो टॉनिक गोलियां इस चिकित्सा में लाभकारी होती हैं। र्यूमेन की दीवारों में खिंचाव शक्ति कम होने पर रोगी को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का घोल देना चाहिए। पाचन संबंधी एक अन्य रोग है अजीर्ण रोग। यह एक रोग न होकर अपच संबंधी एक लक्षण है, जिसमें कि पशु बेचैन उठता है, जिसमें संपूर्ण भोजन प्रणाली पर इसका प्रभाव पड़ता है। अनियमित एवं दूषित आहार, पेट में परजीवी कीटों का होना, कम परिश्रम व अधिक आराम, शीघ्र बिना चबाए खाना खाना, कभी कभी दूसरी बीमारियों के कारण भी अपच हो जाती है। पशु चारा खाने में अरुचि रखकर जुगाली करना बंद कर देते हैं। रोगी को प्यास अधिक लगती है। पशु सूखा और सख्त थोड़ा थोड़ा करके कई बार गोबर करता है तथा पशु बहुत सुस्त रहता है। गोबर की जांच तथा रूमन की जांच के अनुसार चिकित्सा की जाती है तथा पशु 2-3 दिन में सामान्य हो जाता है। पाचन संबंधी एक अन्य व्याधि है अतिसार। यह स्वयं एक बीमारी न होकर बीमारियों का लक्षण है। इसमें पशु बार बार पानी जैसा पतला गोबर करता है। बार बार दस्त होने से पशु बहुत निर्बल हो जाता है। अगर चिकित्सा ठीक से न की जाए तो पशु की मृत्यु भी संभव है। अनियमित एवं दूषित आहार जैसे सड़े गले, बासी और विषैले पदार्थ खाने से यह रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त संक्रामक रोग जैसे पौकनी, गलघोंटू, अमीबा, रोटा वायरस एवं पेट के कीड़ों के कारण भी संक्रमण फैल सकता है। रोग लगने पर पशु को पहले कब्ज होता है, वह सुस्त रहकर खाना पीना तथा जुगाली करना बंद कर देता है। बाद में पतले दस्त होने लगते हैं। पशु को बुखार नहीं आता, किंतु प्यास अधिक लगती है। पशु के शरीर में पानी तथा खनिज लवणों की कमी के कारण वह कमजोर हो जाता है। आंखें धस जाती हैं तथा खाल सूख जाती है। इस रोग का निदान लक्षण के आधार पर तथा गोबर की जांच कराकर किया जाता है। चिकित्सा हेतु रोग का कारण पता चलने के बाद दस्त न होने वाली दवाइयां तथा रोग नष्ट करने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी न होने पाए इसके लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। साथ ही पास के सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी। विषय था पशुओं में पाचन संबंधी रोग और उपचार। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी।

0: चंदन का एहसास।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म शोर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की।

समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कुमार के गाए फिल्म मेरे जीवन साथी के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।

0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों सहित देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में यह आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
3: ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन के निर्माण की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
4: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में ही 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमरनायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से बने अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
5: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था।

0: सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत भी की।
2: उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए, खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं उनको कुछ बात समझा दें, और उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज और जितने स्कूल्स हैं वहां पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कल लखनऊ में मतदाता साक्षरता क्लब और ECI नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ और अमेठी सहित 20 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1,500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदास कॉलेज में देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत की। वो आज लखनऊ और आसपास के जिलों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में कल 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।
3: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशक स्वास्थ्य को पत्र जारी करके स्वाइन फ्लू के मामलों की लगातार समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। श्री पाठक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वाइन फ्लू से संबंधित मामलों पर नजर रखी जाए, साथ ही अस्पतालों में आने वाले संभावित और संक्रमित मरीजों की स्थिति की नियमित निगरानी और आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के NXE भवन सभागार में स्टेट रिव्यू मिशन SRM के दूसरे चरण के तहत गोरखपुर और वाराणसी मंडल की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मिशन निदेशक ने दोनों मंडलों की स्वास्थ्य इकाइयों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1,500 संस्थानों के युवाओं से 27 अगस्त को वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल, फिटनेस और

अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जिले ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचा भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल। आज करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और ब्रिक्स

0: ज्ञानेश कुमार और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने बारे हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। आज सबसे पहले आपको सुनवा में मोहन स्वरूप भाटिया का लिखा कार्यक्रम ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय सीजी मंदिर बरसाना, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की है।

प्रस्तुत है आकाशवाणी मथुरा वृंदावन द्वारा तैयार ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे रूपक माला का रूपक लाडली जी का धाम श्री बरसाना। आलेख है मोहन स्वरूप भाटिया का, संयोजक है श्री कृष्ण शरद।

0: राधा का आमंत्रण पाकर कृष्ण राधा की लीला भूमि बरसाना में आए।
1: और कृष्ण के आगमन से धन्य हो उठा बरसाना सोने में सुगंध की तरह।
0: भारत की हृदय स्थली है ब्रजभूमि और ब्रजभूमि का हृदय है बरसाना।
1: ब्रज 84 कोस परिधि चार धामों में से एक है बरसाना।
0: ब्रज 84 कोस में चार गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नदगाम।
1: बरसाना प्रेममयी राधा की क्रीड़ा स्थली, जहाँ के कण कण में समाया हुआ है रस।
0: जहाँ रस ही खानो, रस ही पानो, रस ही रस सरसानो।
1: राधा प्रेममयी तहाँ खेलत कण कण रस को थानो।
0: बरसाना रस सृष्टि का, रस वृष्टि का स्थल है।
1: बरसाना शब्द में ही रस वर्षा की अभिव्यक्ति है।
0: भक्त जनों की तो ये अनुभूति है कि बरसाने में जो रस बरसता है वैसा रस स्वर्ग में भी नहीं बरसता।
1: देवताओं को भी जो दुर्लभ है वह रस बरसता है बरसाने में।
0: ऐसो रस बरसे बरसानो, सो रस बै

0: बरसाना है तो मथुरा जनपद का एक छोटा सा कस्बा,
1: किंतु राधा कृष्ण की माधुर्यमयी लीलाओं का स्थल होने के कारण देश विदेश के लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों
0: राधा कृष्ण के उपासकों के अंतरतम में रचा बसा एक सुपरिचित नाम है बरसाना।
1: बरसाना की प्रसिद्धि का एक और भी कारण है यहाँ की लठामार होली।
0: लठामार होली के कारण ही बरसाना का नाम संसार के मानचित्र पर अंकित है।
2: रंगीली होली के पावन पर्व पर ब्रज बरसाना धाम से बोलते हुए मैं श्री कृष्ण शरण साथी श्री राधा बिहारी गोस्वामी के साथ नमन करता हूँ इस ब्रज भूमि को, जहाँ दिव्यता भव्यता नमन करती है समय समय पर। भुवन मोहिनी ब्रजभूमि को जहाँ है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो बहे बा जमुना के तीर, तज तीरत हरे राधिका तन दुत कर अनुराग, जिह ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। ऐसी है हमारी ये ब्रजभूमि, तो इस ब्रजभूमि के ग्राम बरसाना से स्वागत है अभिनंदन है अपने सभी श्रोताओं का, रंग रस बरसाते इस बरसाना धाम से।
1: तो आइए दरस परस करें ब्रज भूमि के हृदय राधा रानी की लीला स्थली बरसाने का।

0: बरसाना मथुरा से गोवर्धन होकर लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है।
1: दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कोसी से नंदगांव होकर भी बरसाना पहुंचा जा सकता है।
0: मथुरा से बरसाना जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें, टेम्पो, टैक्सी तथा अन्य वाहन उपलब्ध होते हैं
1: और ठहरने के लिए पर्यटक आवास गृह तथा धर्मशालाएं भी हैं।
0: क्षेत्रफल की दृष्टि से बरसाना लगभग 230 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
1: बरसाना की सीमा में प्रवेश करने से कई किलोमीटर पहले पर्वत शिखर पर स्थित मंदिरों के दर्शन होते हैं
0: और बरसाना में प्रवेश करते ही श्रद्धालु भक्तजनों के मन में भक्ति और आस्था का सागर हिलोरे लेने लगता है।
1: एक चिरंतर आनंद की, आह्लाद की अनुभूति होती है।
0: कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा के चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर
1: बरसाना बसा है लगभग 200 फुट ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत शिखर की तलहटी में।
0: इस पर्वत शिखर की ब्रह्मा जी के रूप में मान्यता है।
1: कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में अवतार लिया तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीलाओं और दिव्य रास विलास के दर्शनों की आकांक्षा व्यक्त की।
0: श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वो वृषभानुपुर में पर्वत के रूप में जाकर विराजमान हो जाएं।
1: राधा जी के पिता वृषभानु की राजधानी प्राचीन पुरातन वृषभानुपुर ही आज का बरसाना है।
0: ब्रह्मा जी के एक पर्वत के रूप में विराजित होने की मान्यता के कारण ही उसे ब्रह्मगिरी पर्वत या बृहत सानपुर पर्वत कहा जाता है।
1: यह पर्वत श्रृंखला मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र की भरतपुर सीमा से उठी है और इसकी ऊंचाई लगभग 200 फुट है।
0: ब्रह्मा जी चार मुखों के समान इस पर्वत की चार चोटियां हैं, भानुगढ़, मानगढ़, तानगढ़ और विलासगढ़।
1: भानुगढ़ में राधा जी का विशाल मंदिर स्थित है। इसे राधा जी के एक प्रिय नाम लाडली जी के नाम पर लाडली जी का मंदिर या लाडली जी का भवन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, बरसाना कस्बे से मंदिर पर पहुंचने के लिए तीन मार्ग हैं। पत्थर की लगभग 250 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पर पहुंचा जा सकता है।
1: बच्चे और युवा तो उछलते कूदते राधा रानी की जय बोलते हुए यहां सरलता से पहुंच जाते हैं,
0: किंतु प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को मंदिर तक पहुंचने में हाफनी तक आ जाती है।
1: लेकिन राधा जी के दर्शनों की ललक संजोए वृद्ध और अशक्त व्यक्ति यहाँ पालकी से पहुंचते हैं।
0: मंदिर में प्रवेश पत्थर से निर्मित एक कलात्मक द्वार से होता है।
1: इस द्वार का निर्माण मदन मोहन भंडारी ने कराया था।
0: इस द्वार से प्रवेश करने पर दाईं ओर दिखाई देते हैं कुछ प्राचीन मंदिर।
1: 16 से 18वीं शताब्दी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण हुआ था।
0: इनका निर्माण मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल के अतिरिक्त कराया रूपराम कटारा, माधवराव सिंधिया और लाखा बंजारा ने।
1: लाखा बंजारा के संबंध में बताया जाता है कि जब वो बरसाने से गुजर रहा था
0: तो उसका गाड़ा यहाँ रुक गया और प्रयास करने पर भी वहाँ से आगे नहीं बढ़ा।
1: लाखा बंजारा ने जब यहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प व्यक्त किया तभी उसका गाड़ा आगे बढ़ सका।
0: शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से ये मंदिर सामान्य श्रेणी के थे।
1: इनमें विराजित राधा जी की प्रतिमाएं बाद में निर्मित मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाती रहीं।
0: राधा जी के यहाँ निर्मित सर्वप्रथम मंदिर के संबंध में प्रामाणिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है,
1: किंतु प्राचीन मंदिर के नाम से जो देवालय इस समय है उसका निर्माण संवत 1675 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुदेव ने कराया था।
0: इसके निकट ही वर्तमान भव्य एवं विशाल मंदिर स्थित है जिसके निर्माण में एक धनी मानी भक्त लाल हर गुलाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: मंदिर प्रांगण में संगमरमर की एक भव्य छतरी बनी हुई है जिसे श्री जी की बैठक कहा जाता है।
0: श्रावण में हरियाली तीज के अवसर पर मंदिर में प्रतिष्ठित लाडली जी के श्री विग्रह को इस छतरी में लाकर विराजमान कराया जाता है।
1: इस छतरी के समक्ष हाल ही में एक विशाल कक्ष का निर्माण हुआ है जिसमें भक्तजन विश्राम करते हैं।
0: छतरी की दाईं ओर निर्मित सीढ़ियों पर चढ़कर दर्शनार्थी मंदिर के एक और द्वार पर आ जाते हैं।
1: यहाँ से दाईं ओर चलने पर लाडली जी के मंदिर का विशाल प्रांगण है।
0: प्रांगण में दाईं ओर लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर श्री राधा जी का भव्य आयताकार जगमोहन है।
1: इसकी छत तथा दीवालों पर राधा कृष्ण की लीलाओं के मनोहारी चित्र अंकित हैं।
0: पूर्व दिशा में गर्भगृह है जिसमें श्री राधा और श्री कृष्ण के भव्य श्री विग्रह विराजित हैं।
1: मंदिर पर शिखर स्थापित है। शिखर की ऊंचाई पर्वत तथा अन्य भवनों से काफी अधिक है।
0: मंदिर प्रांगण के बाईं ओर एक ऊंचा चबूतरा है जहां से संपूर्ण बरसाना के समग्र दर्शन किए जा सकते हैं।
1: उसी प्रकार जैसे वायुयान में यात्रा करते हुए नीचे के भवन, सड़क, वृक्ष आदि दिखाई देते हैं।
0: लाडली जी मंदिर में

0: सेवा पूजा गौड़ीय संप्रदाय के विद्वान आचार्य और ब्रज भक्ति विलास के रचनाकार नारायण भट्ट के वंशजों द्वारा की जाती है।
1: नारायण भट्ट ने बरसाना के निकटवर्ती उन स्थलों की खोज की थी जहां राधा कृष्ण ने लीलाएं की थीं।
0: और उन्होंने बरसाना के कीर्तिदा सरोवर, वृषभान सरोवर, प्रियाकुंड, दोहिनी कुंड आदि पौराणिक स्थलों के महत्व से अवगत कराया था।
1: नारायण भट्ट के वंशज लाडली जी के मंदिर में एक सेवायत श्री बाल कृष्ण गोस्वामी से जब हमारी भेंट हुई तो उन्होंने बताया,
2: सुबह सुबह मंगला का दर्शन होता है, उसके बाद में आरती होती है मंगला की, और मंगला से आरती के बाद में फिर जा करके घंटा भर श्रृंगार रहता है, उसके बाद में फिर स्नान होते है राधा रानी को। सबसे पहले राधा रानी को स्नान होते हैं, फिर भगवान कृष्ण को स्नान होते हैं, फिर उनके वटन लगाया जाता है, इत्र लगाया जाता है सेंट का, और जाकर के फिर उनको स्नान करा कर उकर के पंडित मंत्रों के द्वारा स्नान करा करके फिर महाराज को कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े इनसे बाद में गहना पहनाया जाता है, गहना से बाद में तिलक लगाया जाता है, तिलक से बाद में फिर दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार आरती होती है महारानी की, श्रृंगार आरती में फिर जा करके समाप्ति हो जाती है, उसके बाद में सब जनता आती है, उसके लिए प्रसाद चिन्ना में दिया जाता है, उसके बाद में फिर अत्या जाकर दर्शन खुले रहते हैं राधा रानी के। 1:30 बजे पर महारानी का भोग आ जाता है, उसके बाद में दोपहर की आरती होती है 12 बजे 1:30 बजे, और उससे बाद में महारानी को आराम कराया जाता है। अब महारानी आराम कर रही हैं, फिर 3:30 बजे पर महारानी को फिर जगाया जाता है, फिर उनका जाकर कपड़ा पहनाए जाते, वस्त्र आदि पहन गहना पहना करके, उसके बाद में फिर महारानी के उत्थापन का दर्शन हो जाता है। उत्थापन का दर्शन फिर यहाँ पर नंद बरसाना और नंदगाम की सबकी समाज होती है, उसमें होलियाँ गपती हैं, उससे बाद में फिर संध्या आरती होती है, सबसे पहले महारानी का भोग आता है, उससे बाद में महारानी की आरती होती है, आरती से बाद में फिर जा करके फिर दर्शन हो जाते हैं, उससे बाद में फिर ओलाई होती है सैन की 7:30 7:30 7:30 बजे पर, ओलाई से बाद में फिर आरती होती है, आरती के बाद में फिर महारानी को शयन करा दिया जाता है।
0: होली से पूर्व फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मंदिर प्रांगण में लड्डू लीला और उसके अगले दिन नवमी को संगीत समाज गायन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब से 125 वर्ष से भी अधिक पहले मथुरा के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर F.S. ग्राउज ने बरसाने की लठामार होली आकर देखी थी, संगीत समाज सुनी थी और नंद गांव के हुरियारों द्वारा बरसाने के हुरियारों को इंगित करके गाई जाने वाली बधाई को
1: अपने ग्रंथ मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोर के पृष्ठ संख्या 92 पर अंकित किया।
0: लठामार होली के अवसर पर होने वाली संगीत समाज में बरसाने और नंदगांव के गुसाई
1: राधा और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करते हुए सुनाते हैं।
0: प्रेम भरी गालियां, रस भरी गालियां, मीठी मीठी गालियां।
1: बरसाना के गहवर वन में पिछले 50 वर्षों से अधिक से निवास कर रहे हैं निष्प्रिय संत श्री रमेश बाबा ने
0: इन गालियों में प्रेम प्रीत के निश्चल दर्शन किए हैं और रस की अनुभूतियां की हैं। आइए उनसे मिलते हैं।
3: यहाँ की गाली इतनी प्रिय है कि आज तक प्रतिवर्ष रंगीली होली पर परंपरा चल रही है, गोस्वामी लोग आते हैं और भरपेट गाली खाते हैं, और गाली खा करके वो जो समाज होती है वहाँ ब्रजभान भवन में वाह वाह वाह करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, बरसाना इतना मीठा है कि जहाँ की गाली भी मीठी है, इसलिए बरसाना से मीठा और क्या होगा।
1: बरसाना की लठामार होली इतनी अनूठी होती है कि बरसाना होली का पर्याय ही बन गया है।
4: बरसाने की रंगीली गली आज आमंत्रण दे रही है उन हुरियारों को जो अपने हृदयों में धारण किए हुए हैं प्रेम के रस भरे सुहाने रंग, लाठी की मार खाने के लिए होली खेलने के अनूठे बहाने और जीने के नए ढंग, रस की प्रेम की मार की अनूठे प्यार की फागुनी दयार की जीत की हार की जीवंत कहानी है बरसाने की ये लठामार होली।
0: फाल्गुन शुक्ला नवमी को श्री कृष्ण के गांव नंदगांव के हुरियार बरसाना आया करते हैं।
1: और लाडली जी के मंदिर में संगीत समाज के बाद वो जैसे ही रंगीली गली नामक स्थान पर पहुंचते हैं, वहां लहंगा फरिया ओढ़नी पहने लंबा घूंघट डाले बरसाने की गोपी

0: कारण उन पर दनादन दनादन लाठियां बरसाते हुए दिखाई देती हैं।
1: और नंदगांव के होरियार इन लाठियों को अपनी ढालों पर झेलते हुए प्रेम के संग आगे बढ़ते जाते हैं।

0: होली के अतिरिक्त बरसाना के तीन पर्व और प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं।
1: श्रावण शुक्ला तृतीया को हरियाली तीज, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राधाष्टमी और भाद्रपद शुक्ला तृतीया को सांकरी खोर में मटुकी लीला।
0: सांकरी अर्थात संकीर्ण और खोर का अर्थ है गली। विलासगढ़ और दानगढ़ की पहाड़ियों के मतेज स्थान से निकलकर जब बरसाने के गोपियां दही माखन लेकर निकलती थीं, तो श्री कृष्ण और उनके सखा
1: उनकी मटुकियां फोड़ देते थे और दही माखन लूट लिया करते थे।
2: आए नंदराय के कुमर कान मारत मधुर मुस्कान।

0: इस सांकरी खोर को ही बाल्यावस्था में राधा की माधुर्यमयी लालित्यमयी बोली, माई री माई सांकरी गली में मेरे कांकरी गरतुए, सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
1: मानगढ़ माननी राधा और श्री कृष्ण की मान मनोहर का स्थल है। यहाँ भगवान मान बिहारी लाल के दर्शन हुआ करते हैं। निकट ही मोर कुटी है, जहाँ श्री राधा जी को रिझाने के लिए श्री कृष्ण ने मयूर के रूप में नृत्य किया था।
0: इस कल्पना को कवियों ने यूं संजोया, मोर बनो नाचे चित चोर प्राण प्यारी को।
1: मोर कुटी में राधा कृष्ण की युगल छवि का मनोरम चित्र है, जिसके नीचे अंकित है ये दोहा, मैं तू तू मैं हो गए, मैं तन तू मम प्राण, अब को ना कह सके मैं और तू हैं आन।

0: यही है सुप्रसिद्ध कहवर बन, अपने नाम के अनुकूल सघन बन, चारों ओर वृक्षावलियों और राधा कृष्ण की लीलाओं से धन्य।
1: नैसर्गिक सौंदर्य संजोए प्रिया प्रीतम के रास विलास की मनोरम स्थली गहवर वन में ही वास करते हैं निष्प्रह संत श्री रमेश बाबा। संस्कृति के बदलते परिवेश ने जिस प्रकार वर्षाना और यहाँ के पर्यावरण को आहत किया है, उस वेदना का अनुभव करते हैं वे।
2: पर्यावरण की दृष्टि से एक सबसे पहली बात तो है कि लताएं कट गईं, वृक्ष कट गए, और जो वन विभाग को दिया भी जाता है वहाँ भी करप्शन है, वो लोग पैसा वैसा लेकर के सब कटवा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये क्षति रही। दूसरे, जितने कुंड थे उनमें इंक्रोचमेंट्स हुए, स्थलों में भी हुए, लीला स्थलियाँ भी इस तरह से दबती जा रही हैं। जहाँ सांकरी खोर है, जैसे है, हमने देखा पहले सांकरी खोर पर मटकी लीला पर हजारों लोग बैठ करके आनंद लेते थे, अब सांकरी खोर में मुश्किल से बैठने की जगह मिलती है। रास्ते में वहाँ से बरसाने से यहाँ तक बिना मतलब लोगों ने दबा रखा है, इस तरह से सारी सुंदरता ही नष्ट होती जा रही है।
1: भानगढ़ तथा मानगढ़ के अतिरिक्त एक और स्थान है दानगढ़, श्री कृष्ण द्वारा ब्रज गोपिकाओं से दही माखन के दान मांगने का स्थल,
0: और विलासगढ़ है राधा और कृष्ण की वह संधि के साथ संपन्न विलास लीला का दिव्य स्थल।
1: भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़ का भ्रमण करते हुए जहाँ भक्तजन राधा कृष्ण की लोक रंजनी लीलाओं की माधुर्यमयी स्मृतियों में खो जाते हैं,
0: वही पर्यटकों को यहाँ पर्वतीय अंचल के भ्रमण का सा आनंद प्राप्त होता है।
1: बरसाना में आकर्षण का एक और केंद्र है जयपुर वाला मंदिर।
0: बरसाना कस्बे से सीढ़ियां चढ़कर तथा लाडली जी मंदिर से लगभग एक फरलांग की दूरी पार करके यहां पहुंचा जा सकता है।
1: जयपुर मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था।
0: विशाल क्षेत्र में निर्मित यह मंदिर राजस्थानी शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है।
1: मंदिर की दीवारों पर राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का बड़ा ही कलात्मक ढंग से अंकन किया गया है।
0: मंदिर

0: भगवान नित्य बिहारी, हंस गोपाल और कुशल बिहारी के अतिरिक्त नारद जी, सनकादि जी की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं।
1: जयपुर मंदिर में निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार सेवा पूजा की जाती है।
0: बरसाना के अन्य मंदिरों में बाबा दादी मंदिर नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है, लाडली जी मंदिर के मार्ग में ही स्थित है।
1: इसमें श्री राधा जी के बाबा मिहिभान और दादी सुखदा की मूर्तियां हैं।
0: वृषभान बाबा के मंदिर में वृषभान जी, कीरत जी, राधा जी और श्रीदामा जी के प्रतिमाएं हैं।
1: राधा जी की 8 मुख्य सखियां थीं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंद्रावली, सुदेवी, रंगदेवी और चंपकलता।
0: अष्ट सखी मंदिर में इन सभी सखियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं।
1: इनके अतिरिक्त जुगल किशोर, गोपाल जी आदि मंदिर भी यहाँ हैं। बरसाने के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है रूपराम कटारा का। ये भरतपुर तथा ग्वालियर के राजा महाराजाओं के राज पुरोहित थे।
0: इन्होंने अपनी जन्मभूमि बरसाना में कई सरोवर, कुंड, भवन, छतरी तथा हवेलियों का निर्माण कराया।
1: मानोखर, इसके पक्के घाट, चारों ओर का परकोटा और जलमहल नामक 3 मंजिले भवन का निर्माण रूपराम कटारा ने ही कराया था।
0: प्रिया कुंड, जिसे पीरी पोखर भी कहा जाता है, का निर्माण मोहनराम लवानिया ने कराया।
1: पीली पोखर के जल की आभा में पीलापन होने का कारण ये कहा जाता है कि राधा द्वारा विवाह के पश्चात हल्दी के उबटन लगे पीले हाथों को यहाँ धोने से यहाँ के जल का रंग पीला हो गया है।
0: बरसाना में कई हवेलियों, बाबड़ी, कुएं आदि का निर्माण तांतिया ठाकुर ने कराया था।
1: तांतिया ठाकुर बरसाना का रहने वाला था। नौकरी की तलाश में वो लखनऊ चला गया
0: और वहाँ एक नवाब का हरकारा बन गया।
1: सेवा और स्वामी भक्त से प्रसन्न होकर नवाब ने उसे जमादार बना दिया।
0: वृद्धावस्था होने पर उसने अपनी जन्मभूमि में लौटने की इच्छा व्यक्त की।
1: नवाब ने उसका अनुरोध तुरंत स्वीकार कर लिया और चलते समय उसे बहुत सारा धन दिया।
0: तांतिया ठाकुर ने उस धन से बरसाने में कई निर्माण कराए।
1: बरसाना में बल्लभकुल, चैतन्य, निम्बार्क आदि अनेक संप्रदायों के आचार्यों का आगमन होता रहा है
0: और इन संप्रदायों द्वारा उठाई जाने वाली ब्रज 84 कोस की यात्राओं का पड़ाव भी बरसाना में रहता है।
1: संवत 1549 में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ब्रज की यात्रा की और बरसाना आए।
0: संवत 1600 और 1624 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने ब्रज यात्रा की थी और बरसाना में उनकी यात्रा का पड़ाव भी हुआ था। कवि जगतानंद ने उनकी इस यात्रा का इस प्रकार वर्णन किया है।
1: गोस्वामी विट्ठलनाथ ने बरसाना के निकट सुनहरा गांव में पड़ाव किया और फिर सांकरी तथा चिकसौली होते हुए भानपुर गए। यहां से वो मानगढ़ होते हुए दानगढ़ पहुंचे और दान घाटी पर चढ़े थे।
0: बरसाना में अनेक प्राचीन कुंड भी हैं।
1: इनमें कीर्ति कुंड, विहार कुंड, दोहिनी कुंड तथा रतन कुंड हैं, किंतु कई कुंड रख रखाव के अभाव में समाप्त प्राय होते जा रहे हैं।
0: राधा कृष्ण की लीला स्थली, मंदिर, सरोवर और कुंडों के दर्शन के लिए श्रद्धा, भक्ति और आस्था में डूबे लाखों भक्त जन, नर नारी प्रति वर्ष बरसाने आते हैं।

0: लाडली जी के मंदिर में आए, ये हैं एक दर्शनार्थी तरसे लाल।
1: राधा रानी जी का मंदिर एक एक पहाड़ पर स्थित है, जो बहुत ही एक मनोहारी है और अपने आप में बहुत कुछ धरोहर को संजे हुए है और एक आध्यात्मिक शांति का लाभ देता है, साथ में लोगों के एक आस्था का केंद्र भी बना हुआ है।
2: बरसाना रस की भूमि है, रंग की भूमि है, रस रंग की भूमि है।
0: अनुभूतियों की भूमि है, यहाँ वर्ष भर रस और रंग बरसते रहते हैं।
3: आप आनंद ले रहे थे ब्रज के मंदिर ठाकुर द्वारे, विषय श्रीजी मंदिर बरसाना, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया और प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की थी। इसी के साथ आज का ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली
1: समाचार प्रभात के साथ, मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरल

0: टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत।

0: Morning News. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिल

0: से भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम की गीतांजलि में चित्रपट संगीत के कुछ नगमे। नगमा हमने लिया है फिल्म साहेब और गुलाम से, आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म नमक हलाल में, और आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान, कैलाश खैर, जसविंदर नरूला और साथियों को। फिल्म का नाम है आपकी खातिर।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म फागुन में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है सफर।

किशोर कुमार के गाए फिल्म सफर के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम नगमों का यह कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, भारतीय अस्मिता का अदम्य जयघोष वंदे मातरम। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा और आपसे भेंट कर रहे हैं OP सिंह।

भारत की राष्ट्रीय अस्मिता किसी एक कालखंड में निर्मित नहीं हुई है। यह हजारों वर्षों में विकसित सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत, सामूहिक स्मृति और स्वतंत्रता संग्राम की

अमर धारा से निर्मित हुई है। भारतीय अस्मिता अर्थात भारतीयता का मूल तत्व केवल भूगोल या राजनीतिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होती, यह उन आध्यात्मिक मूल्यों, बहुलतावादी परंपराओं, मातृभूमि भक्ति और मानवीय समन्वय की भावना से सिंचित है जो भारत को विशिष्ट बनाती है। इसी अस्मिता का सर्वाधिक प्रभावशाली, भावनात्मक और प्रेरणादायक उद्गम स्थल है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। यह गीत केवल साहित्यिक रचना नहीं, न केवल स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान, बल्कि भारतीय आत्मा की वह ध्वनि है जिसने जनता के हृदय में स्वाधीनता का ज्वार उत्पन्न किया। वंदे मातरम, मातृभूमि को वंदन, आदर, समर्पण और प्रेम की अद्वितीय अभिव्यक्ति, भारतीय अस्मिता का सबसे प्रखर जयघोष है। यह जयघोष राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव, प्रकृति पूजा और आत्मिक उन्नयन का प्रतिफल है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना 1870 के आसपास वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। बाद में यह गीत उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। यह वह काल था जब भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था, अंग्रेजी सत्ता अपने चरम अहंकार पर थी और भारतीय समाज में नई राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हो रहा था। ऐसे अस्थिर समय में वंदे मातरम मातृभूमि की शक्ति और सौंदर्य का वह गायन बना जिसने भारतीय हृदय को अद्भुत उत्साह और आशा से भर दिया। आनंद मठ एक आध्यात्मिक राष्ट्रवादी ग्रंथ है। इसमें मातृभूमि को तीन रूपों में दर्शाया गया है, शोषिता माता जो दुख में है, गुलामी में जकड़ी है, संघर्षरत माता जो उठना चाहती है पर बाधाएं हैं, उद्भासिता माता जो समृद्ध, पराक्रमी और विजयी है। वंदे मातरम इन तीनों अवस्थाओं के बीच आशा की किरण है। यह उस मुक्त, समृद्ध और सुशोभित भारत की कल्पना का गीत है जिसके लिए संघर्ष करना हर भारतीय का धर्म है। वंदे मातरम की भारत को आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि औपनिवेशिक दमन के दौर में देशवासियों को एक ऐसे सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सूत्र की जरूरत थी जो उन्हें पराधीनता की बेड़ियों से बाहर निकलने की प्रेरणा दे सके। उस समय अंग्रेजी शासन केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और संस्कृति पर भी गहरी चोट पहुंचा रहा था। ऐसे में वंदे मातरम मातृभूमि को देवी स्वरूप में स्थापित कर राष्ट्रभक्ति की अदम्य चेतना जगाने वाला मंत्र बनकर उभरा। इस गीत ने भारत माता को केवल भौगोलिक सत्ता नहीं बल्कि जीवंत शक्ति के रूप में अनुभव कराया, जिससे भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की आकांक्षा और भी तीव्र हुई। वंदे मातरम ने बंगाल विभाजन जैसे आंदोलनों में जन एकता का अप्रतिम साधन बनकर लाखों लोगों को एक भावनात्मक ध्वज तले संगठित किया और अंग्रेज शासन के विरुद्ध निर्भीकता से खड़े होने का साहस दिया। यह गीत किसी जाति, भाषा या क्षेत्र विशेष का प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना को स्वर बना। भारत को इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि स्वतंत्रता के संघर्ष में केवल हथियारों से नहीं बल्कि मनोबल, सांस्कृतिक गर्व और अंतःकरण की शक्ति से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी और वंदे मातरम वह प्रेरणा बनी जिसने भारतीयों को अपने राष्ट्र और उसकी गरिमा के लिए समर्पित रहने का संकल्प दिया। वंदे मातरम क्रांतिकारियों के लिए कंठहार बना क्योंकि यह गीत मातृभूमि के प्रति अतुलित प्रेम, समर्पण और स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित करता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत अंग्रेजी दमन के विरुद्ध संघर्षरत युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसकी पंक्तियों में निहित स्वदेश प्रेम ने क्रांतिकारियों के मन में जोश, त्याग और बलिदान की भावना को प्रबल किया। जब वे गुप्त सभाओं, आंदोलनों या संघर्ष की राह पर बढ़ते थे तो वंदे मातरम उनके भीतर अटूट आत्मविश्वास भर देता था। यह केवल एक गीत नहीं रहा बल्कि स्वतंत्रता के

ये जीवन न्योछावर करने की चेतना का मंत्र बन गया। अनेक क्रांतिकारी इस जयघोष को अपना संकल्प सूत्र मानकर मृत्यु तक अविचल रहे। पुलिस और शासन की कठोरता के बावजूद यह गीत उनके होठों पर बना रहता था और उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता था। वंदे मातरम ने संघर्ष को वैचारिक और भावनात्मक आधार दिया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के वीर युवाओं को एक सूत्र में पिरोया। यही कारण था कि यह गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनकर क्रांतिकारियों के हृदय में कंठहार की तरह स्थायी स्थान प्राप्त कर गया। क्रांति का अभियान वंदे मातरम भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक सशक्त प्रेरक ध्वनि के रूप में उभरा, जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जनमानस में अदम्य साहस और संघर्ष की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी स्वरूप में प्रतिष्ठित कर राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और स्वाधीनता की भावना को चरम पर ले जाता है। अंग्रेजी दमन, अत्याचार और विभाजनकारी नीतियों से त्रस्त भारतीयों के लिए वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं था, बल्कि यह क्रांति का मंत्र, संघर्ष का आह्वान और आत्मबल का स्रोत बन गया। 1905 के बंग भंग आंदोलन से लेकर स्वदेशी आंदोलन, असहयोग और क्रांतिकारी गतिविधियों तक यह गीत हर मोड़ पर स्वतंत्रता सेनानियों की धड़कन में बस गया। आजादी के दीवानों जैसे अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, खुदीराम बोस, भगत सिंह और तमाम क्रांतिकारी दलों ने वंदे मातरम को शक्ति का मूल आधार माना, क्योंकि यह गीत प्रतिरोध, त्याग और मातृशक्ति की भावना को एक साथ जगाता था। इसके उच्चारण मात्र से युवाओं में जोश, ऊर्जा और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने का संकल्प प्रकट होता था। वंदे मातरम ने क्रांति को जन आंदोलन का स्वरूप देकर स्वतंत्रता की लौ को तेज किया और भारतवासियों के भीतर स्वतंत्र, गौरवशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की अटूट आकांक्षा को जन्म दिया। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता, राष्ट्रभाव, त्याग, बलिदान और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का अद्वितीय उद्घोष है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नवीन ऊर्जा प्रदान की। वंदे मातरम का अर्थ है माता को प्रणाम, अर्थात भारत भूमि के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जयघोष क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि इसमें मातृभूमि के प्रति भक्ति, साहस और त्याग की भावना संचारित होती है। लाठी गोली की बारिश झेलते हुए भी सत्याग्रहियों के मुख से वंदे मातरम के स्वर थमते नहीं थे। यह नारा उन्हें निर्भीक बनाता था और राष्ट्रहित के लिए निस्वार्थ संघर्ष करने की शक्ति देता था। यह केवल गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति भावनात्मक एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक है। आज भी वंदे मातरम हर भारतीय के भीतर देशभक्ति, सम्मान और राष्ट्रनिष्ठा का भाव जगाता है। वर्तमान समय में वंदे मातरम की आवश्यकता और महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल एक राष्ट्रगीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और एकता का प्रतीक है, जो आज के विभाजित, प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में साझा राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है। वैश्वीकरण के युग में जब स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत पर बाहरी प्रभाव बढ़ रहे हैं, वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भारत की विविधता ही उसकी शक्ति है और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाली भावना राष्ट्रभक्ति है। सामाजिक तनाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण और व्यक्तिगत हितों के बढ़ते दबाव के बीच वंदे मातरम राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देकर समाज में सामंजस्य पैदा करता है। यह युवाओं में देश के प्रति उत्तरदायित्व, सेवा और योगदान की प्रेरणा जगाता है तथा उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति कराता है।

0: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस गीत ने भारतीयों के भीतर त्याग और संघर्ष की शक्ति भरी, वही आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने का भाव पैदा करता है। इस प्रकार वंदे मातरम वर्तमान समय में नैतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर भारत को आत्मविश्वासी, एकजुट और प्रगतिशील बनाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय चेतना का वह अमिट स्वर है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों लोगों के मन में आत्मबल, त्याग और राष्ट्रभक्ति की अलौकिक ऊर्जा भर दी। यह गीत मात्र शब्दों का समूह नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति गहन श्रद्धा, सांस्कृतिक गौरव और भारतीय अस्मिता का समग्र प्रतीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह अमर राष्ट्रगीत स्वतंत्रता संघर्ष के प्रत्येक चरण में प्रेरक शक्ति बनकर उभरा और जनमानस में स्वाभिमान का दीपक प्रज्वलित करता रहा। वंदे मातरम ने भारतीय समाज को यह बोध कराया कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं और राष्ट्रीय एकता का सूत्र कितना सुदृढ़ है। यही कारण है कि यह गीत आज भी भारतीय पहचान, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का अनन्य प्रतीक बनकर हमें एक सूत्र में बांधता है। वंदे मातरम का जय घोष भारतीय अस्मिता की निरंतर यात्रा को शक्ति प्रदान करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी राष्ट्रभक्ति, समर्पण और सांस्कृतिक चेतना का अविनाशी संदेश बनकर सदैव प्रेरित करता रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता भारतीय अस्मिता का अदम्य जयघोष वंदे मातरम। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर देहात और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख है देवेश सिंह का।
1: कानपुर देहात में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित सरकारी कार्यालयों, स्कूल कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान हुआ। जिलाधिकारी

0: कपिल सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारी, प्रतिनिधि, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कानपुर देहात में आजादी के जश्न को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री अजीत पाल और अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और भारत माता के जय घोष से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। जिन प्रतिनिधियों ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संदेश दिया, वहीं प्रशासन की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। कानपुर देहात के मूसानगर में संत शिरोमणि की कलश वंदन यात्रा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गो संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि अब गो संरक्षण अभियान में नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा और गांव-गांव 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। सरकार का मकसद बच्चों और युवाओं में गो संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके लिए करीब 10,000 गो मित्र तैयार किए जाएंगे। गो संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे जो आगे अन्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। सरकार का प्रयास है कि बच्चों के मन में गो माता के प्रति प्रेम और गो संरक्षण की भावना विकसित हो। मंत्री ने कहा कि गो संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को इस अभियान से जोड़कर गांव-गांव तक गो संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। मूसानगर से गो संरक्षण को लेकर सरकार की नई पहल का संदेश साफ है, अब नई पीढ़ी भी बनेगी गो संरक्षण अभियान की सहभागी। कानपुर देहात में सावन माह के चलते पूरा जनपद शिवमय नजर आ रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कांवड़िये भी गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत 11 से 18 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के सत्यापन की जाँच की। नियमों का उल्लंघन करने पर 46 वाहनों के चालान किए गए जबकि 8 वाहनों को निरुद्ध किया गया। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने की हिदायत दी है। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं गाँव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राखियां तैयार करने में जुटी हैं। महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों की राखियां तैयार कर रही हैं। इन राखियों की बिक्री से समूह की महिलाओं को आमदनी हो रही है और उनकी मेहनत को बाजार भी मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि पहले वे सिर्फ घर के काम तक सीमित थीं, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें हुनर दिखाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है। इस बार वे अपने हाथों से तैयार राखियों के जरिए रक्षाबंधन के त्योहार को खास बनाने में जुटी हैं। कानपुर देहात में फर्जी फर्मों के नाम पर काम कराने और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतों के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने संबंधित विभागों को फर्म के दस्तावेज, पंजीकरण, जीएसटी, बैंक खातों और किए गए कार्यों की जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की जांच में यदि किसी फर्म के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए ताकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त न किया जाए।
1: कानपुर देहात जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक सचिवालय वार एक औषधि वाटिका विकसित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में 14 अगस्त को जिले के 19 विकास खंडों में कुल 233 औषधि वाटिकाओं में पौधारोपण किए गए। इनमें सहजन, आंवला, नींबू सहित विभिन्न पारंपरिक उपयोग वाले पौधे शामिल हैं। इन वाटिकाओं से पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ नई पीढ़ी को

0: औषधि पौधों और उनके उपयोग की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। हरदोई में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने गांधी भवन परिसर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने हालिया परीक्षा पेपर लीक विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीट और झारखंड जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था अत्यधिक मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसक नहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरदोई में राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों ने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाले और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संकल्प लिया। हरदोई में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अनुनय झा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने जनपदवासियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करके हम देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंतल करने की घोषणा की। इस घोषणा के उपलक्ष्य में हरदोई की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। शाहबाद विकासखंड परिसर में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी की उपस्थिति में उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री की घोषणा को देखा और सुना तथा लाभांश वृद्धि पर खुशी जताई। इस वृद्धि से हरदोई के 1612 उचित दर विक्रेताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हरदोई में शहीद मेजर पंकज पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने हरदोई मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद मेजर पंकज पांडे के नाम पर रखने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि मेजर पंकज पांडे ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिस पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहीदों का सम्मान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर सभी वर्गों को साथ लेकर विकास कार्य कर रही है। हरदोई में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने विचारों, सिद्धांतों, संवेदनशीलता और राष्ट्र सेवा से देश के राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी। वे दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों में सम्मानित जननेता के रूप में स्थापित हुए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबोहवा।
3: वास्तव में धरती पर अगर अमृत है तो वो और कुछ नहीं, पानी ही है। अपने शहर एवं घर को सुंदर बनाने के लिए प्रकृति की अनमोल धरोहर अर्थात भूजल के स्तर को गिराते जा रहे हैं। श्रोताओं, आज से पहले शहर में कुछ समय तक मुख्य मार्गों को छोड़कर शहर की ज्यादातर आंतरिक सड़कों पर दोनों ओर कच्ची जमीन हुआ करती थी। मानसून के दौरान बारिश का पानी इसी जगह से जमीन के अंदर चला जाता था, लेकिन शहर को सुंदर बनाने की कवायद में भविष्य की तस्वीर बिगड़ रही है। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत लगाई गई टाइल्स के नीचे कंक्रीट की पक्की लेयर बिछाने की वजह से अब यहां से बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता है एवं बारिश होने पर शहर के ज्यादातर इलाके का पानी सड़क, बिल्डिंग आदि से बहकर नाले नालियों के माध्यम से नदियों तक पहुंच जाता है। इस वजह से भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार शहरीकरण के नाम पर फैल रहा कंक्रीट का यह जंगल प्राकृतिक जल चक्र को तह

नस नस कर रहा है। श्रोताओं, आज प्रत्येक नागरिक अपने घर को सुंदरतम बनाना चाहता है। बारिश के दिनों में घर के आसपास कच्ची जमीन में कीचड़ सा हो जाता है, जो उस सुंदरता में एक धब्बा होता है। इससे बचने के लिए हम उस जमीन को या तो पक्का कराते हैं या उस पर सीमेंट कंक्रीट किया जाता है, या और अधिक सुंदर दिखाने के लिए उसमें टाइल्स लगा दी जाती है। इस प्रकार हम पानी के प्राकृतिक मार्ग को, जिससे जल जमीन द्वारा शोषित होता है, उसे हम अवरुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ हम भी भूजल स्तर गिराने में अपना योगदान देते हैं। श्रोताओं, सड़क के किनारे टाइल्स लगाने का सबसे बड़ा नुकसान भूजल स्तर के अलावा पेड़ पौधों को हो रहा है। कंक्रीट की लेयर डालने के बाद बिछाई गई टाइल्स से पेड़ों का दम घुट रहा है। इसका नतीजा यह है कि पेड़ों की ऊंचाई बढ़नी बंद सी हो गई है। साथ ही जड़ों तक पानी नहीं पहुंचने की वजह से पेड़ सूख रहे हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार हाल ही में आए आंधी तूफान में पेड़ों के उखड़ने की सबसे मुख्य वजह ये इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं कॉन्क्रीटाइजेशन ही है। अमूमन भूजल तक पेड़ों की कुछ जड़ें जाती है और कंक्रीट की लेयर बिछाने के बाद पेड़ की जड़ों के फैलने का रास्ता बंद हो गया है। लिहाजा भूजल नहीं पहुंचने से पेड़ कमजोर हो रहे हैं और आंधी में आधार कमजोर हो जाने के कारण पेड़ गिर जाते हैं। इस प्रकार ग्रीन सिटी क्लीन सिटी नाम पर कंक्रीट सिटी को साकार किया जा रहा है। टाइल्स लगाने से जमीन के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सड़क के किनारे टाइल्स लगाने का फैसला आने वाले दिनों में स्लो पॉइजन का कार्य करेगा। मेरा आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि जहां तक संभव हो सड़कों के किनारे टाइल्स लगाने से परहेज करना चाहिए। जरूरी होने पर छेद वाली टाइल्स बगैर कंक्रीट की लेयर डाले लगानी चाहिए, जिससे बरसात के दिनों में पानी जमीन तक पहुंच सके। जबकि पेड़ों के आसपास करीब एक वर्ग मीटर की कच्ची जगह की ऊंची घेराबंदी की जानी चाहिए। इसके अलावा छेद वाली टाइल्स नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में इन्हीं इंटरलॉकिंग टाइल्स को लगाने का कार्य हम समझदारी से करें। इन टाइल्स को कच्ची जमीन को समतल करके थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर लगानी चाहिए, जिससे पानी का जमीन में जाने का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध नहीं हो। इस प्रकार घर के आसपास की सुंदरता भी बनी रहेगी तथा भूजल स्तर बढ़ने में भी सहायता मिलेगी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। विषय था भूमिगत जल, आलेख और वाचन हेमंत झा का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। आलेख स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है चंद्रिका कुमार का, संयोजन एवं प्रस्तुति है ओम प्रकाश सिंह की।
1: विविधा विविधा विविधा।

स्वच्छता में थोड़ी सी लापरवाही, इन सब के कारण जल जनित संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आज के विविधा में हमारा विषय है पानी की हर बूंद सेहत का सवाल। इस विशेष कार्यक्रम में हम क्रमशः जानेंगे जल जनित रोग क्या हैं, इनके प्रमुख कारण और लक्षण क्या हैं, संक्रमण हमारे शरीर तक किस प्रकार पहुंचता है और इससे बचाव के लिए हमें किन सावधानियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, और इसी विषय पर हमारी विशेष भेंट वार्ता भी है डॉक्टर भूपल सिंह तोमर के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले चरण से। श्रोताओं, पानी हमारे जीवन का आधार है। शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन से लेकर तापमान के संतुलन और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक अनेक जैविक क्रियाएं पानी पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब यही पानी रोगजनक सूक्ष्म जीवों से दूषित हो जाता है तो ये संक्रमण का माध्यम बन सकता है। दूषित पानी अथवा उससे तैयार भोजन के माध्यम से फैलने वाले अनेक संक्रमणों को सामान्यतः जल जनित रोग कहा जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पैचिस और हेपेटाइटिस ए जैसे रोग प्रमुख हैं। सबसे पहले बात हैजा की। ये विब्रो कॉलरा नामक जीवाणु से होने वाला संक्रमण है। दूषित पानी या भोजन इसके प्रसार का मुख्य माध्यम है। अत्यधिक पानी जैसे दस्त इसके प्रमुख लक्षणों में है और इसके कारण शरीर में पानी तथा आवश्यक लवणों की तेजी से कमी हो सकती है। इसलिए हैजे में निर्जलीकरण से बचाव और समय पर चिकित्सकीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रमुख रोग है टाइफाइड। ये सेलेमोनेला टीफी जीवाणु के कारण होता है और दूषित पानी तथा भोजन इसके संक्रमण के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। लंबे समय तक रहने वाला बुखार, कमजोरी, सिरदर्द और भूख कम लगना इसके सामान्य लक्षण हैं। लगातार बुखार रहने पर चिकित्सकीय जांच आवश्यक है। अब बात पेचिस की। इसमें दस्त के साथ पेट में मरोड़ और कुछ मामलों में मल में रक्त या श्लेष्मा भी दिखाई दे सकता है। ये जीवाणु अथवा परजीवी संक्रमण से हो सकती है। अधिक दस्त होने पर निर्जलीकरण का खतरा रहता है, इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो मुख्यतः दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैल सकता है और यकृत को प्रभावित करता है। बुखार, थकान, मितली, भूख में कमी और कुछ मामलों में आंखों तथा त्वचा का पीला पड़ना इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा दूषित पानी और खराब स्वच्छता के कारण विभिन्न प्रकार के दस्त, आंतों के संक्रमण और परजीवी रोग भी हो सकते हैं। हर दस्त जल जनित रोग नहीं होता और हर जल जनित संक्रमण केवल पानी पीने से ही नहीं फैलता। संक्रमण का तरीका संबंधित रोगजनक और बीमारी पर निर्भर करता है, इसलिए सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए केवल पानी को साफ रखना पर्याप्त नहीं, स्वच्छ हाथ, सुरक्षित भोजन और स्वच्छ परिवेश भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि पानी दूषित होता कैसे है और रोगजनक हमारे शरीर तक पहुंचते कैसे हैं? इसी को समझेंगे अगले चरण में। श्रोताओं, साफ दिखाई देने वाला पानी हमेशा सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं। अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। पानी के दूषित होने का एक प्रमुख कारण है मानव और पशु मल से होने वाला प्रदूषण। यदि सीवेज का रिसाव हो, शौचालय की व्यवस्था उचित ना हो या मल मूत्र किसी जल स्रोत के संपर्क में आ जाए तो रोगजनक सूक्ष्म जीव पानी तक पहुँच सकते हैं। बरसात के मौसम में ये जोखिम और बढ़ सकता है। बाढ़ और जल भराव के दौरान नालियों या सीवर का गंदा पानी कुओं, हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों तक पहुंच सकता है। लेकिन दूषण केवल जल स्रोत पर ही नहीं होता। घर में सुरक्षित पानी आने के बाद भी यदि उसे खुले बर्तन में रखा जाए, गंदे हाथों से पानी निकाला जाए या अस्वच्छ पात्र का उपयोग किया जाए तो पानी दोबारा दूषित हो

0: सकता है। पाइपलाइन में रिसाव भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। पेयजल पाइप के आसपास यदि गंदा पानी जमा है और पाइप में कहीं रिसाव हो तो दूषित पदार्थ पानी की आपूर्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अब संक्रमण की पूरी प्रक्रिया को एक सरल क्रम में समझिए। दूषित स्रोत, दूषित पानी या भोजन जिनसे रोगजनक का शरीर में प्रवेश और फिर उनसे संक्रमण, संक्रमण से बीमारी, यानी संक्रमण की इस श्रृंखला को किसी भी स्तर पर रोका जा सकता है। हमारे हाथ इस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शौचालय के बाद हाथ न धोना, भोजन बनाने से पहले हाथ साफ न करना या गंदे हाथों से भोजन और बर्तनों को छूना, ये छोटी सी लापरवाहियाँ संक्रमण को आगे बढ़ा सकती हैं। इसी तरह दूषित पानी से फल सब्जियाँ धोना, उसी पानी से बर्फ बनाना या पेय पदार्थ तैयार करना भी संक्रमण का कारण बन सकता है। खुले में रखा भोजन भी दूषित हो सकता है। इसलिए याद रखिए, सुरक्षित पानी, स्वच्छ हाथ, सुरक्षित भोजन और स्वच्छ परिवेश, ये चारों संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में महत्वपूर्ण है। और अब इसी विषय को चिकित्सकीय दृष्टि से बेहतर समझने के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं स्थल ध्वनियांकन पर आधारित विशेष बातचीत। आप हैं इस वक्त हमारे साथ मथुरा के जाने माने आयुष के डॉक्टर बीएस तोमर जी।
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका हमारे। सबसे पहले
2: थैंक यू वेरी मच,
1: आप हमसे बात करें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम चर्चा करेंगे जल जनित बीमारियां, उनके कारण और निवारण के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जल जनित बीमारियां क्या होती हैं और जल दूषित होने के जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या है?
2: जल जनित बीमारियां हैं टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा
1: जी,
2: और डिहाइड्रेशन।
1: इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: इनका कारण जो है पानी में जो रिसोर्सेज हैं पानी के वो अच्छे ना होना, नलकूपों के पास सफाई की व्यवस्था प्रॉपर ना होना, नलकूपों में सीवेज का पानी आ जाना, जहाँ पानी हमारा कलेक्ट होता है उसकी समय समय पर सफाई ना होना, ये कारण है जो हमको दूषित पानी मिलता है पीने के लिए, हम लोग बीमार पड़ते हैं
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया दूषित पानी पीने से हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो उससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं दूषित पानी से? और हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए केवल साफ पानी दिख रहा है, तो क्या हम मान सकते हैं साफ पानी दूषित नहीं है, पूरी तरह स्वच्छ है?
2: सभी पानी देखने में साफ ही दिखाई देते हैं, गंदा तो कोई पिएगा नहीं। अगर पीला काला पानी है
1: जी,
2: मटमैला पानी है, कोई उसको नहीं पिएगा। देखने में जो पानी साफ होते हैं वो स्वच्छ नहीं होते हैं, वो हाइजीनिक नहीं होते हैं। हाइजीनिक पानी टेस्टिंग से ही पता लग सकता है ये पानी हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है। उसका ORP मेंटेन होना चाहिए, पानी एल्कलाइन होना चाहिए, पानी महीन होना चाहिए पीने में, और पानी स्वादिष्ट होना चाहिए। ये चार विशेषताएं जिस पानी में है वो पानी पीने योग्य है। अगर ये विशेषताएं नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पीने का पानी होता है उसे अगर मान लीजिए हम आसपास रह रहे हैं और थोड़ा गंदा पानी या मटमैला पानी वहाँ पर बह रहा है या मिल रहा है पीने के लिए, तो पीने के पानी को सुरक्षित बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है?
2: पहले हम उसको डबल फिल्टर करके छानेंगे, छानने के बाद उसको उबाल के ठंडा कर लेंगे। उबाल के जब हम ठंडा करेंगे तो वो पानी हमारे लिए शुद्ध हो जाएगा, उसको हम पी सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया उबाल कर हम पानी शुद्ध कर सकते हैं, तो कितनी देर अमूमन हम उबाले उसे, कितनी
2: हंड्रेड फॉरेनहाइट पर उबलने लगे, खोलने लगे पानी, खोलता हुआ दिखता है ना
1: जी जी, यानी एक खोल आ जाए तो हम मान लें कि ये उबल कर
2: दो बार खोल, उसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही खत्म हो जाते हैं।
1: अच्छा, हम देखते हैं कि जो जल जनित बीमारियां वो ज्यादातर हाथ न धोने के कारण भी होती है, तो हाथ धोने का जल जनित रोगों से क्या संबंध है? और बच्चों को जो जल दिया जाता है उस जल जनित बीमारियों से बचाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं?
2: सैनिटाइजेशन का हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल है। हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो हाथ को साबुन से धो के खाना चाहिए, साबुन हमारा डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, जैसे लाइफबॉय है, डेटॉल है, इस तरह के साबुन होना चाहिए। खुशबू वाले साबुन से वायरस बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। हाथ धोने के बाद साफ तौलिया से पहुंच के तभी हम कोई चीज खाएं। बाहर से आए हैं, टेबल पे हाथ रखा हुआ है, उसी से अगर हम भोजन करने लगेंगे या कोई चीज खा लेंगे तो वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएगा, उससे हमको डायरिया है।

0: एंट्री है, कोल्बा है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, पीलिया हो सकता है
1: जी। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है, मतलब कि दस्त हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या दस्त होने पर हम खाना बंद कर दें तो उससे हमारे ठीक हो जाती है डायरिया?
0: नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं बंद करेंगे, खाना उसका चालू रखेंगे, लेकिन पानी उसका चेंज करेंगे, पानी उबाल के छान के देंगे उसको हम।
1: अच्छा, और जैसे हम देखते हैं कि चीनी और नमक के पानी को भी मिलाकर लिया जाता है,
0: अगर वो डिहाइड्रेट है, डिहाइड्रेट है, अगर उसके पानी की कमी है, गला सूख रहा है, बार बार आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, पैर की बिल्लियों में दर्द हो रहा है, तो हम उसको जो है पानी में नींबू चीनी नमक का घोल बना के देंगे,
1: तो उससे
0: उसका डिहाइड्रेशन कवर होगा। उसको पैकेट बाजार में आते हैं, ORS के नाम से आते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से आते हैं, नारियल के नाम से आते हैं, वो घर में अगर कुछ भी नहीं है, नींबू चीनी नमक सबके घर में होता है, उसको हम बना के पिला सकते हैं।
1: मैं जानना चाहूँगी, छोटे जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए स्तनपान कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप इस डिहाइड्रेशन में या डायरिया में?
0: उनके लिए ध्यान ये देना है कि जो घर में चीजें रखी होती है ना, जिससे वो खेलते हैं, तो बच्चे बार बार मुंह में देते हैं उनको, तो हाइजीनिक डिसइंफेक्टेड चीजों से उनको साफ करके रखा जाए, जिससे कि वो अगर मुंह में भी दें तो वहाँ मक्खियां नहीं आनी चाहिए, धूल नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर धूल मिट्टी आएगी तो उससे उनको डायरिया डिसेंट्री होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और पानी की प्रचुर मात्रा, उनको साफ पानी लाएं, जिससे कि पानी की कमी शरीर में ना हो पाए, जिससे कि दस्त अगर हुए भी हैं तो जल्दी कवर हो जाए। पानी की कमी होगी तो हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, उससे परेशानी परिवार की बढ़ती है, आर्थिक खर्चा भी बढ़ता है। पहले से अगर ध्यान रख लेंगे तो इन सब चीजों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो जल जनित रोग है उसमें उनको रोकने के लिए बहुत सारी भूमिका स्वच्छता की भी रहती है। आपने अपनी बातों में ये इंक्लूड किया। अच्छा, क्या वर्षा का जल जो हम देखते हैं, तो वर्षा या बाढ़ के समय जल जनित बीमारियों का खतरा और बढ़ जाता है?
0: वर्षा का जल अच्छा है, वर्षा का जल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका जो कलेक्शन है वो हमें छत के ऊपर से करना चाहिए। जो नालियों में बह के पानी आ जाता है वो पानी अच्छा नहीं होता है
1: जी।
0: और उसमें दूसरी चीजें मिल जाती हैं, कीटाणु मिल जाते हैं, धूल मिल जाती है, मड मिल जाती है, तो इन सब चीजों से उसको बचा के जो स्वच्छ पानी इकट्ठा किया जाए उसको कलेक्ट करके घर भर के रखा जा सकता है। ठीक है, वर्षा जल, अब जैसे बॉम्बे वगैरह के लोग हैं, वर्षा जल पे निर्भर है, वहाँ तो खारा पानी है समुद्र का, वो लोग उसको नहीं पी सकते हैं, तो लेकिन उसको सैनिटाइज करके ट्रीटमेंट देने के बाद ही उसको वापस भेजा जाता है, जो पानी पीने योग्य बन जाता है उसके बाद।
1: अच्छा, जो डॉक्टर बोतल बंद पानी होता है, तो हम क्या इसे मान सकते हैं सुरक्षित होता है?
0: बोतल बंद पानी अभी तो माना जा सकता है सुरक्षित है, लेकिन बस मान सकते हैं। अच्छा। मानक उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो पानी का TDS है वो जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसका जो कम TDS का पानी है, 50 TDS से नीचे का पानी, जैसे आप पानी लेते हैं तो इसका सबका TDS 50 से नीचे आता है। अच्छा। तो 50 से नीचे TDS जिन बोटल्स में होता है उसके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। एसेंशियल मिनरल्स जो हमारे शरीर में जिंक और क्रोमियम की पूर्ति करते हैं वो पानी से ही हमको मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सभी बोतल बंद पानी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए एल्कलाइन वाटर की बोतलें आती हैं बाजार से, वो पानी थोड़ा अच्छा माना जाता है, एल्कलाइन वाटर।
1: जी, मतलब अगर हम बोतल बंद पानी ले रहे हैं तो हम एल्कलाइन वाटर को प्रेफर करें?
0: एल्कलाइन वाटर को प्रेफर करना चाहिए। ये साधारण बोतलें जो है इसका तो ORP ही बहुत कम होता है, तो ये पानी हमें नहीं पीना चाहिए।
1: आपने बहुत ढेर सारी बातें हमें बताई, और अंत में जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए जल जनित बीमारियों से बचाव का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वो क्या देना चाहेंगे आज आप?
0: हाथ मुंह धो के खाना खाएं, हाथ मुंह धो के पानी पिएं, और पानी साफ पीना चाहिए, गंदे पानी से बचना चाहिए, और कटे हुए फल और बाहर रखी हुई सब्जियां, बासा भोजन, ये सब नहीं करना चाहिए। इसको करेंगे तो हम भी बीमार होंगे, हमारे बच्चे भी बीमार होंगे।
1: जी, यानी कि सुरक्षित पानी पिए, हाथ साफ रखें, भोजन
0: साफ पानी, स्वच्छ पानी
1: जी,
0: हाँ, जी। और जल ही जीवन है, और ORS की व्यवस्था अपने घर में जरूर रखें। अगर डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, पानी की कमी है, तो ओरल डिहाइड्रेशन रिकवरिंग व्यवस्था होनी चाहिए, इसको हम ORS कहते हैं। ठीक है
1: जी, डॉक्टर साहब ने बहुत ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को बताई, और जो भी श्रोता साथी इस वक्त हमारे आपको सुन रहे हैं वो जरूर आपकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे, क्योंकि सावधानी ही इस मानसून के सत्र में रोगों से बचाव का मुख्य कारण होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओ, आपने सुनी डॉक्टर भूपल सिंह तोमर से हमारी विशेष भेंट वार्ता। कार्यक्रम में और भी बातें होंगी, फिलहाल हम आपको मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें शरीर संक्रमण के दौरान हमें देता है। जल जनित संक्रमणों में दस्त, उल्टी, पेट दर्द, मरोड़ और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर किसी विशेष रोग का निश्चित निदान नहीं किया जा सकता। आवश्यकता होने पर चिकित्सकीय जांच जरूरी है। बार बार दस्त या उल्टी होने पर अत्यधिक प्यास, मुंह का सूखना, कमजोरी, चक्कर आना और पेशाब कम होना जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं। स्थिति गंभीर होने पर अत्यधिक सुस्ती या बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। इसलिए दस्त और उल्टी की स्थिति में शरीर में तरल पदार्थ की कमी ना होने देना बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे यदि बहुत सुस्त हो, पानी ना पी रहे हों, लगातार उल्टी कर रहे हों या उनका पेशाब बहुत कम हो रहा हो तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। इसी तरह यदि दस्त के साथ मल में रक्त दिखाई दे, तेज या लगातार बुखार हो, बार बार उल्टी के कारण तरल पदार्थ शरीर में ना टिक पा रहे हो, अत्यधिक कमजोरी या चक्कर महसूस

महसूस हो अथवा व्यक्ति की सामान्य स्थिति तेजी से बिगड़ रही हो तो चिकित्सा सहायता लेने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ORS उपयोगी हो सकता है। तैयार ORS घोल पैकेट पर दिए गए निर्देश के अनुसार सुरक्षित पानी में बनाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, हर दस्त में एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। अपनी ओर से एंटीबायोटिक लेना उचित नहीं है। कौन सी दवा आवश्यक है इसका निर्णय चिकित्सक ही करें। इस प्रकार बीमारी की पहचान के साथ साथ निर्जलीकरण को रोकना और समय पर चिकित्सा सहायता लेना उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सबसे प्रभावी उपचार है रोग को होने से पहले रोकना। श्रोताओं, जल जनित रोगों से बचाव की शुरुआत किसी बड़े प्रयास से नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से होती है। पीने और भोजन बनाने के लिए सुरक्षित पानी का उपयोग करें। यदि पानी की सुरक्षा को लेकर संदेह हो तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार उसे सुरक्षित करें। उपयुक्त परिस्थितियों में पानी को पर्याप्त समय तक उबालना कई रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन पानी को शुद्ध करना जितना जरूरी है उसे शुद्ध बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। पानी को साफ और ढके हुए बर्तन में रखें। पानी निकालने के लिए साफ पात्र का उपयोग करें और भंडारण वाले बर्तन की नियमित सफाई करें। दूसरी महत्वपूर्ण आदत, हाथों की स्वच्छता। शौचालय के उपयोग के बाद और भोजन बनाने तथा खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धोएं। भोजन को ढककर रखें। फल और सब्जियां सुरक्षित पानी से धोएं। संदिग्ध या दूषित पानी से बचें और बर्तनों की स्वच्छता का ध्यान रखें। बाहर के पेय पदार्थ या बर्फ की स्वच्छता को लेकर संदेह हो तो सावधानी बरतें। सामुदायिक स्तर पर भी हमारी जिम्मेदारी है कुएं, हैंडपंप, टंकियां और अन्य जल स्रोतों के आसपास गंदगी तथा जल भराव न होने दें। यदि किसी जल स्रोत के दूषित होने की आशंका हो तो संबंधित स्थानीय प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें और सुरक्षित वैकल्पिक पेय जल का उपयोग करें। कुछ जल जनित संक्रमणों से बचाव में टीकाकरण की भी भूमिका है। हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कौन सा टीका और कब लगाना चाहिए ये उम्र, जोखिम और चिकित्सकीय सलाह पर निर्भर करता है। तो श्रोताओं, आज का संदेश बहुत सरल है। पानी सुरक्षित रखें, हाथ स्वच्छ रखें, भोजन सुरक्षित रखें, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं और बीमारी के संकेतों को नजरअंदाज न करें। याद रखिए, स्वच्छ जल केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, आज के विविधा में हमने जाना कि पानी जीवन का आधार है, लेकिन दूषित पानी संक्रमण का माध्यम भी बन सकता है। हमने जल जनित रोगों के प्रमुख कारणों, लक्षणों और संक्रमण की श्रृंखला को समझा। डॉक्टर भूपल सिंह तोमर से हुई विशेष भेंटवार्ता के माध्यम से इस विषय के चिकित्सकीय पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की। हमारी छोटी सी सावधानी बड़ी बीमारी को रोक सकती है, इसलिए सुरक्षित पानी पिएं, पानी को ढक कर रखें, हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, भोजन को सुरक्षित रखें और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाएं। दस्त या उल्टी की स्थिति में निर्जलीकरण से बचाव करें और गंभीर लक्षण दिखाई देने पर बिना देर किए चिकित्सकीय सहायता लें। याद रखिए, हर साफ दिखने वाली बूंद सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर सुरक्षित बूंद को बचाना हमारी जिम्मेदारी जरूर है। इसी संदेश के साथ विविधा का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी केंद्र मथुरा वृंदावन की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम में संयोजन किया और प्रस्तुति थे ओम प्रकाश सिंह की, आलेख स्वर एवं प्रस्तुत सहयोग था चंद्रका कुमार का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: एम 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम आंखों की सामान्य बीमारियां और निदान। कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल और आपसे भेंट कर रही हैं उषा पांडे और आशु रावत।
1: इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, जिंदगी महक उठेगी बस खुश रहा करो। नमस्कार साथियों, आज मैं हूं आपके साथ आशु रावत और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिन बोले जो सब कुछ कह जाती हैं वो आंखें ही तो होती हैं। व्यक्ति के हाव भाव सब आंखों से ही पता चलते हैं। वैसे तो साथियों शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आंखें हमारे लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखती हैं। इनका खास ख्याल रखना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में दूषित वातावरण में हमारी आंखें तो प्रभावित हो ही रही हैं, उस पर भी जो स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का या बड़ों का, वो इसकी रही कसर पूरी कर देता है। तो इस तरह के माहौल में किस तरह हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें सही सलामत रख सकते हैं, ये जानना, ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी परेशानी कोई भी हो, अगर सही समय पर उसका इलाज हो जाए तो बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और आंखों की भी साथियों बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और बाद में जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। और ये सब हमारी आंखों की रोशनी को इतना प्रभावित करता है कि बाद में फिर हमारे हाथ में कुछ ऐसा रहता नहीं। तो इन सब परेशानियों का निदान लेकर आज हम आपके लिए अपने स्टूडियो में लेकर उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल को, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं।
2: साथियों, अपनी साथी आशु रावत के साथ मैं उषा पांडे स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में। जैसा कि हमारी साथी ने बताया कि आज का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां।

0: एवं निदान। और आपकी समस्या का निदान करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये बनता है कि आंखों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
1: जैसे आशु जी ने कहा कि आंखें सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सभी को मालूम है बगैर हम आंखों से देखे कुछ काम कर नहीं सकते और हम बाकी शरीर का ख्याल भी आंखों से देखकर ही कर सकते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। हमारी सारी चीज, हमारी करियर, हमारा प्रोफेशन, सब चीज आंखों से रिलेटेड है।
0: जी डॉक्टर साहब, जीवन की सुंदरता ही आंखों पर निर्भर है। डॉक्टर साहब, आंखों से आजकल जुड़ी हुई सामान्य कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें बराबर देखने को मिल रही हैं?
1: अभी अगर मैं इस समय की बात करूं, इस वक्त मौसम जिस तरीके का चल रहा है, तो जो मैं अपनी ओपीडी में देख रही हूं, सबसे ज्यादा एलर्जी के केसेस देख रही हूं।
0: जी,
1: छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी में आजकल जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, गर्मी है और पॉल्यूशन है, इससे बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और एलर्जी के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं।
0: जी, तो इससे बचने के लिए क्या आप सलाह
1: बचने
0: देती
1: का
0: हैं?
1: बचने का तरीका यही है। एलर्जीज एक्चुअली हमारी बॉडी का एक तरीके का रिस्पांस होता है। हर किसी को एलर्जी उस तरीके से अफेक्ट नहीं करती है, तो किसी में वो ज्यादा होती है उन्हीं चीजों से, किसी में कम। तो सबसे पहला उपाय है बचाव।
0: जी डॉक्टर साहब, आंखों में चिपचिपापन और लालपन किस कारण से होता है?
1: आपकी निगाह कमजोर है और आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी आपकी आंखों में चिपचिपापन रह सकता है, और आंखों का पानी सूखने की स्थिति में जब पानी हमारा ड्राई हो जाता है तो पलकें अच्छे से नहीं चल पाती हैं, उसकी वजह से सूखापन रह सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डाल सकते हैं। आई चेकअप करा के जो भी चश्मे का नंबर है वो प्रॉपरली लगाइएगा। सूखने से पहले जब आंख का पानी गाढ़ा हो जाएगा, जब उसमें पानी कम बनेगा, तो वो चिपचिपापन आएगा, बाद में ड्राई हो जाएगा।
2: जैसा कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे अभी आंखों की एलर्जी के बारे में, तो मैंने देखा है कि आंखों की एलर्जी ऐसी भी होती है कि आंखें पीली हो जाती हैं और थोड़ा साइज में भी अंतर हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है?
1: कोई भी एलर्जी होने पर जब आंखें लाल हो जाती हैं और वो लगातार लंबे समय तक लाल रहें, तो आंखों का में जो ब्लड आता है वो अपना पिगमेंट छोड़ता है, जिसकी वजह से वो पीली नजर आती हैं। और लगातार स्वेलिंग होने की वजह से, आसपास की सूजन की वजह से, आपको ऐसा लगता है कि आंखें छोटी हो रही हैं। छोटी होती नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है। अगर क्रॉनिक एलर्जी हो जाती है तो वो पेशेंट को उतना इरिटेशन वगैरह तो नहीं करती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आंख के अंदर परेशानी बनी रहती है।
0: डॉक्टर साहब, बच्चों में आंखों की एलर्जी ज्यादातर देखने को मिल रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
1: एक तरीके की एलर्जी होती है वीकेसी के नाम से, वर्नल क्रिटोकंजंक्टिवाइटिस, जो यूजली बच्चों में और स्पेशली लड़कों में ज्यादा, उनके हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा होता है, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो 12 साल तक ज्यादा परेशान करेगी। ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है 12 साल के बाद भी वो होती रहती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, इसे रोकने का है।
0: डॉक्टर साहब, ये ग्लूकोमा यानी काला पानी क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोता साथी और हम आपसे जानकारी चाहेंगे।
1: काला पानी थोड़ा खतरनाक बीमारी है और 40-50 साल के बाद थोड़ा सा इसकी रिस्क बढ़ जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर को दिखाएं पहली बार जरूर, 40-50 साल की उम्र में एक बार अपना चेकअप करा लें, साल दो साल में एक बार चेकअप कराते रहें, क्योंकि डॉक्टर ही देखकर इसमें डाउट होने पर कुछ खास जांचें करके इसको जल्दी पहचान सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक और बात कहना चाहूंगी कि जिनके घरों में उनके माता पिता या किसी सगे संबंधी को काले पानी की बीमारी है, उनके पूरे परिवार को इस चीज के लिए सजग रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, ये मोतियाबिंद क्या है, किस कारण से ये होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है?
1: मोतियाबिंद यूजुअली एक एजिंग प्रोसेस है। उम्र की वजह से जैसे हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं, अपना पूरा काम करना बंद कर देती हैं, उसकी वजह से होता है मेनली। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद होता है, जो माँ को गर्भावस्था के समय किन्हीं दवाइयों या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ कुछ लोगों में मोतियाबिंद कुछ स्टेरॉइड्स ड्रॉप इस्तेमाल करने की वजह से, स्टेरॉइड्स एक तरीके की दवाइयां होती हैं जो लोग लोकली मेडिकल स्टोर से लेकर डाल लेते हैं एलर्जी के केसेस में स्पेशली, और एलर्जी के केसेस में स्पेशली ऐसा होता है। उसके अलावा चोट की वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। तो जो उम्र वाला मोतियाबिंद है, जो एज के साथ होता है, तो अगेन उम्र हमारी जो होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र में भी बड़े स्वस्थ दिखते हैं और कुछ लोग कम उम्र में बड़े उम्र दराज दिखते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली पर। तो अगर हम शुरू से ही अपने खान पान का ध्यान दें तो हो सकता है कि हम इसको डिले कर लें।
0: डॉक्टर साहब, ये अपवर्तक दोष क्या है और बच्चों में आंखों की कमजोरी और जो चश्मे की आवश्यकता पड़ने लग जाती

0: पति है वो उसका संकेत क्या हो सकता है?
1: अपवर्तक दोष जी, निगाह की कमजोरी। तो यूजली जो निगाह की कमजोरी है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब सब लोग थोड़ा गलत ले जाते हैं, मेरे माता पिता में तो है नहीं, हमें तो लगा नहीं चश्मा। जेनेटिक का मतलब है कि उस बच्चे के जीन्स में इस तरीके का कोडिंग है कि उसको नंबर आया। वो कहीं से भी आ सकता है, दादा दादी नाना नानी फोर फादर से भी आ सकता है। तो एक तो वो है, उसके अलावा अभी जो नंबर की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में चश्मे के नंबर लग रहे हैं, वो बेसिकली लाइफ स्टाइल की वजह से है, जीवन शैली की वजह से है। क्योंकि बच्चे लगातार जब पास का काम करते हैं तो उनके नंबर के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, क्या मोतियाबिंद बुजुर्गों में होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है?
1: हाँ, मैंने बताया आपको कि मोतियाबिंद किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में जन्मजात या चोट लगने की वजह से हो सकता है, इसके बाद यंग एज में स्टेरॉइड ड्रॉप इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, बाकी जो नेचुरली होता है वो धीरे धीरे आपकी उम्र के साथ होता है। हाँ, एक और खास चीज बता दूं, डायबिटीज के केसेस में भी मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी होने की संभावना होती है।
0: डॉक्टर साहब, ये कल ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या तेजी से बढ़ रही है
1: जी,
0: इसके बारे में हमारे श्रोता साथियों को जानकारी दीजिए।
1: हाँ, ड्राई आई फिर से हमारी जीवन शैली की वजह से है। मोबाइल की जो क्रांति हुई है और मोबाइल जिंदगी के हर फील्ड में आ गया है, पढ़ाई से लेकर हमारे काम तक, और इसकी इम्पोर्टेंस को खत्म भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं मना करूं या माँ बाप मना करें बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करने के लिए उनको स्क्रीन इस्तेमाल करनी होती है
0: जी।
1: तो उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि हम लगातार जब स्क्रीन को देखते हैं तो हम पलकें नहीं झपकाते, हमारी पलकें जो है नेचुरली आंख में जो पानी बनता है उसको स्प्रेड करती हैं। अब वो स्प्रेड अगर खत्म हो जाएगा तो ड्राई स्पॉट्स बन जाएंगे, जो वातावरण की हवा है उसको ड्राई कर देगी। ड्राई करने पे आपको इरिटेशन होगा तो वो धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होने लगेगा। तो जो भी आप स्क्रीन पे काम करते हैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि बीच बीच में अपनी आंखों को पलकों को झपकाते रहें, कॉन्शियसली सोच समझ के झपकाते रहें। आप भूल जाते हैं उसको झपकाते रहें, और स्क्रीन टाइम को अगर कम कर सके तो बहुत अच्छा है। उसके लिए एक रूल है 20-20-20 का, कि आपको अगर लंबे समय स्क्रीन पे काम करना है तो आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें। 20 फीट की दूरी पे वैसे ना देख सके तो आपके खिड़की हो, खिड़की के थ्रू देख लें, नहीं तो उठ के चले जाइए, पानी पी लीजिए, पानी की बॉटल अपने पास मत रखिए, उठ के पानी पीकर आ सकते हैं, तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा फोकस।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी ग्लूकोमा के बारे में
1: जी,
2: तो आपने बताया कि सर्जरी के जरिए भी इसको नहीं सही किया जा सकता, तो इसका एंड में इलाज क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, या इलाज होने के बाद भी इसके चांसेस रहते हैं आने के दोबारा?
1: हाँ,
2: ऐसा कुछ
1: इसमें सर्जरी की जाती है, लेकिन सर्जरी इसीलिए की जाती है कि आगे ना बढ़े, जो डैमेज हो चुका होता है उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते। जैसे मोतियाबिंद में तो मोतियाबिंद हुआ, आपने ऑपरेशन किया, आपको वापस दिखाई दे जाएगा, लेकिन काले पानी में जो भी रोशनी खत्म हो गई उसको हम वापस नहीं कर सकते। अगर दवाइयों से हम उस आंख में एक्चुअली एक प्रेशर होता है उसको नापते हैं, अगर उस प्रेशर को हम एक निश्चित डिग्री तक कंट्रोल कर सकें दवाइयों से तो दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, अगर दवाइयों से नहीं हो सकता तो फिर ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन से भी हम वापस नहीं ला पाएंगे रोशनी, लेकिन अगेन आपको आगे गिरने से रोकने में मदद करेंगे।
0: डॉक्टर साहब, आंखों के प्रेशर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से आंखों का प्रेशर बढ़ जाना ये क्या होता है और इसका चेकअप कब कब कराना चाहिए? जैसे प्रेशर बढ़ जाने से एक सर में दर्द बना रहता है, आंखों में दर्द बना रहता है, ऐसी क्या समस्या है?
1: आंख के प्रेशर का मतलब है जो हम ग्लॉकोमा में बात कर रहे थे, आंख के अंदर का जो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है
0: जी, जी।
1: तो वो तो चेकअप तो डॉक्टर ही करेंगे, है ना
0: जी। पानी का सूख जाना होता है?
1: नहीं नहीं नहीं, काला पानी की बात जो कर रहे थे हम, काला पानी ग्लूकोमा जिसको प्रेशर को हम चेक करते हैं, जिसको इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहा जाता है, वो चीज वही है। आपका प्रेशर से मतलब है आंखों पे तनाव से वो हमारे काम करने पर होता है। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना प्रोफेशन में लगातार काम करते हैं, और अगर हमारी आंखें पूरी तरीके से ठीक नहीं देख पा रही तो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। आपने थोड़ी देर तक तो आराम से काम किया, फिर मांसपेशियों ने जोर डालकर काम किया, तो मांसपेशियों के काम करने की एक सीमा होती है, वो थकने लगती हैं, और आपने उसके बाद भी काम किया तो आपको तनाव महसूस होता है। फिर कभी कभी इतना ज्यादा भी हो सकता है कि वो आपकी आंखों के चारों तरफ का दर्द, आपके सिर का दर्द भी बन सकता है
0: जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और बीपी की वजह से भी आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज के लिए भी मैं कहना चाहती थी कि जो भी डायबिटीज के मरीज हैं, एक्चुअली क्या होता है जब भी उनको डायग्नोज होती है डायबिटीज, तो उस समय उनको कोई परेशानी नहीं होती है ना, तब वो सोचते हैं ठीक है हम खा खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मीठा खा लेते हैं, कल देखेंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके जो बॉडी के ऑर्गन से खराब हो जाते हैं। तो डायबिटीज का असर हमारे शरीर के कई हिस्सों पे पड़ता है। जब हमारी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है, हमारी आंखों पर, हमारे दिल पर, तो आप

0: जानते ही हैं, हमारी किडनीज पर और हमारे ब्रेन पर, जिसमें स्ट्रोक पड़ जाता है।
1: जी.
0: तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायबिटीज को आपके जब से पता चले, जब से आपका निदान हो, तब से आप उसको कंट्रोल में रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि एक बार अनकंट्रोल डायबिटीज से जब बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप करते हैं कंट्रोल तो वो डैमेज तो शुरू हो ही चुका होता है। तो डायबिटीज की वजह से पर्दे पर खून के धब्बे आ जाते हैं और पर्दे पर सूजन आ जाती है, जिसके लिए आपको इलाज लेना पड़ता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, समय समय पे नियमित जांच जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों को आप थोड़ा जानकारी दे दें कि कितने समय पर जांच करानी चाहिए।
0: जी, एक्चुअली अगर हम शुरू से शुरू करें तो एक तो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उस समय हमें आई चेकअप करा लेना चाहिए, स्पेशली अगर माता पिता या फैमिली में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है। कभी कभी माँ ने अपना लैसिक सर्जरी कराया हुआ होता है, वो चश्मा नहीं लगा रही होती है, लेकिन लैसिक सर्जरी कराने से जो चश्मे की बीमारी है वो खत्म नहीं हो जाती है, सिर्फ चश्मा हट जाता है। तो अपने बच्चों का समय से जांच करा लें। ये इस बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी हमारी सिर्फ एक आंख में प्रॉब्लम होती है, दोनों में नहीं होती है, दोनों में होती है तो पता चल जाता है, और एक आंख में निगाह कम होने पर बच्चों को समझ में नहीं आता और वो चीज अनडायग्नोज रह जाती है, पता नहीं चलती, और हमारी आंखें देखने से ही उनकी रोशनी बढ़ती है और उस स्थिति में आंख लेजी रह जाती है, जिसका बड़े होने पर पता चलने पर इलाज नहीं है। तो एक तो स्कूल जाने के एज पे सबसे पहले शुरू करा लें, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 40 साल की उम्र पर हमारी पास की निगाह कमजोर होना शुरू हो जाती है और बाकी सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स के इफेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं, तो 40 साल की उम्र पे एक बार जरूर कराएं। इन सब के बाद साल में एक बार या दो बार, दो साल में एक बार जरूर करा लें, और अगर कोई परेशानी है तो फिर आप जाएंगे ही डॉक्टर के पास। अगर चश्मा लग गया है तो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए हर 6 महीने पे चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, खान पान बचाव इसके बारे में
0: इम्पोर्टेंट है ये, और इसके बाद में एक बात और भी बोलूंगी, पहले खान पान की बात कर लेते हैं। खान पान का जो चीज है अभी बहुत बिगड़ गया है और मैं बड़े कंसर्न हूँ इस चीज के लिए, और इवन जो चश्मे के नंबर के लिए भी है, अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है चश्मे के नंबर। आजकल मदर्स बहुत ज्यादा कंसर्न रहती हैं अपने बच्चों के चश्मे के नंबर के लिए, उसमें खान पान के साथ एक और चीज है सनलाइट का एक्सपोजर। तो ये स्टडीज में और रिसर्च में साबित हो चुका है कि 45 मिनट्स का सन एक्सपोजर पॉजिटिव इफेक्ट रखता है, बच्चों की आंखों का चश्मा बढ़ने से रोकता है, और उतना ही अगर आप इंडोर्स रहते हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो लगातार पास का काम करना और सनलाइट में नहीं रहना निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आउटडोर एक्टिविटी करना, सनलाइट में रहना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और खाना पीना इम्पॉर्टेंट है। अब ठीक है, जो बच्चे हैं जिनका ग्रोइंग फेज है, आप उसको सब चीज देंगे, दालें, हरी सब्जियां, फल, ये ना एक बड़ा मोनोटोनस सा डायलॉग है, कोई भी खाने पीने के बारे में पूछता है और हम सब लोग यही बोलते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे सब यही कहेंगे कि हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, दालें खाइए। माँ को भी पता होता है, फैमिली को भी पता होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली होता नहीं है,
2: क्योंकि बच्चों की अपनी चॉइस होती है,
0: बच्चों की अपनी चॉइस होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है ये, अभी ना न्यूट्रिशन पे बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, हम लोगों की जो बात की बीमारियां हैं वो सब हमारे खान पीन से रिलेटेड है। पिछले 10-20 सालों में डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ गई जो पहले कभी नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैक्ड फूड जो हम लोग खाते हैं, बना बनाया जंक फूड खाते हैं, बाजार की चीजें खाते हैं। तो उस पे सभी को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, इज अ होल, नॉट फॉर द आईज, सिर्फ अकेले आंखों के लिए नहीं कह रही मैं। जो मिडिल एज के लोग हैं, जैसे 30-40-45 साल के लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप देखो कि जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो बीमारी की परेशानी होती है घर में, है ना
1: जी।
0: जब आप बच्चे होते हो आपको दुनिया में किसी चीज की चिंता नहीं होती, आप मिडिल एज पर हो आप सोच सकते हो कि आपके बड़े बूढ़े बीमार हैं घर पे, तो आप समझ सकते हो आप अपने बच्चों को किस तरीके से उस रास्ते पर जाने से रोक सकते हो, ठीक है। तो आपको उनको टेस्ट देना है, डेफिनेटली बच्चे हैं, बच्चों को टेस्ट देना ही देना है, आपको तरीके ढूंढने होंगे कैसे उनके टेस्ट को मेंटेन करते हुए उनको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, योग, व्यायाम,
0: ये सब चीज तो कुछ ना करें तो वॉकिंग तो जरूर करें,
1: वॉकिंग
0: और योग करना बहुत जरूरी है। जो एज के साथ हम लोगों के जॉइंट्स नहीं मूव करते हैं, चलने में प्रॉब्लम आती है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए जवानी में काम करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो किसान भाई हैं मेरे पास आते हैं, उनको खेती करते समय आंख में चोट लग जाती है, ज्यादातर लोग वहीं लोकली मेडिसिन ले लेते हैं और उसकी वजह से उनकी समस्या काफी बढ़ जाती है। उसमें से जो भी किसान भाई हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है, स्टेरॉइड ड्रॉप नहीं लीजिए प्लीज। आप सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल सकते हैं, सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे आप चाहे ठीक नहीं होंगे लेकिन स्टेरॉइड ड्रॉप डालने से आपकी आंखें बहुत खराब हो जाती हैं, फिर उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को बस ये एक मैसेज जरूर देना है किसान भाइयों और किसान भाइयों के एरिया वाले मेडिकल स्टोर के भाइयों को, वहां के लोकल प्रैक्टिशनर्स को, कि

0: आंख में किसी भी वेजिटेटिव बॉडी मतलब किसी लकड़ी पेड़ पौधे से चोट लगने पर स्टेरॉइड ड्रॉप्स प्लीज मत दीजिए।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने।
2: डॉक्टर साहब आपने इतने अच्छे से हमारे श्रोता साथियों को और हमें समझाया जानकारी दी। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि आंखें हैं तो रंग हैं, सपने हैं संसार है, इनकी सुरक्षा में ही जीवन का असली उपहार है। रोशनी केवल आंखों में नहीं होती, सही जानकारी भी जीवन में उजाला लाती है। हमें विश्वास है कि हमारी ये जो आज की बातचीत है श्रोता साथियों को बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
3: अभी हमारे श्रोता जानकारी प्राप्त कर रहे थे आंखों की सामान्य बीमारियां और निदान विषय पर, और कार्यक्रम में जानकारी दे रही थी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, आपसे भेंट कर रही थी उषा पांडे आशु रावत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

विनोद राठौर, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म दीवाना में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले आदित्य नारायण को फिल्म रंगीला में।

आशा भोसले और आदित्य नारायण को आपने अभी सुना फिल्म रंगीला में। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले को फिल्म नया दौर में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है आरजू।

कानंद इस समय आप ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म आए दिन बहार के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपालती ग्राम नगरा बजरी राया आपसे मुखातिब हूँ जी।
0: जी, और हम आपसे मुखातिब और आप हमसे मुखातिब, लेकिन रीजन तो हमें भी पता है कि आपने फोन किस लिए किया है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
1: एक फिल्म है हरे राम हरे कृष्ण, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में हमारी मेरी बहना रश्मि बहना है।
0: ओहो, धन्यवाद धन्यवाद आपका। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: सिस्टर,
0: हाँ जी,
1: देखो हमारे यहाँ इतने पेड़ हैं या कोई ठिकाना नहीं है।
0: अच्छा,
1: और एक पेड़ तो ऐसा है जुड़वा, जामुन का और आम का।
0: अच्छा,
1: उस पर झूले पड़ते हैं। आप आ जाइए, आप पेड़ लगाइए, झूलिए।
0: बिल्कुल आएंगे। तो कौन सा गांव है आपका?
1: गांव है विजयी का नगला।
0: विजयी का नगला,
1: हाँ, ये जो नहर पे है, जो माठ ब्रांच है।
0: अच्छा, माठ के पास
1: नहीं, ये माठ ब्रांच नहर, जो नहर गंगा नहर है।
0: अच्छा,
1: इससे से मथा रोड से करीब आधा किलोमीटर चल के।
0: अच्छा,
1: जिधर नहर का भाव है।
0: अच्छा,
1: और सुनो,
0: हाँ,
1: रक्षा बंधन 28 तारीख का।
0: हाँ,
1: सिस्टर मेरी कोई बहन नहीं है।
0: अच्छा,
1: मैं आपको यही वो कहूंगा, रिक्वेस्ट विद हैंड।
0: हाँ,
1: आप आइए, आप झूलिए और राया की सोन पपड़ी खाइए और घर को ले जाइए बच्चों के लिए।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संभव हुआ तो जरूर किसी दिन आएंगे राया के आपके गांव विजयी का नगला में, और झूला भी झूलेंगे और सोन पपड़ी भी खाएंगे। ठीक है,
1: बहुत धन्यवाद कष्ट के लिए।
0: जी।

0: आकाशवाणी।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी मैंने आपको पहचान लिया, आपने नहीं पहचाना तो मैं आपका ब्रज रेडियो सोफा में इंतजार लगा दिया, बोल रहा हूँ रश्मि दीदी नमस्कार।
0: आप कैसे कह सकते हैं मैंने आपको नहीं पहचाना, पर मैं चाहती हूँ मेरे भाई बंधुओं की पहचान सब लोग जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपसे परिचय मांगा जाता है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने वर्षों से जुड़े हुए हमारे जो सभी श्रोता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उनकी आवाज को हम ना पहचाने, ऐसा हो सकता है।
1: जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल, मैंने भी ऐसे ही बोल दिया था, शायद दीदी ने पहचाना कि नहीं।
0: हाँ नहीं नहीं बिल्कुल पहचान लेते हैं, हमारे पुराने श्रोताओं के तो आवाज से हम जान ही जाते हैं।
1: तो जी बिल्कुल दीदी, रेडियो से तो हम आकाशवाणी मथुरा से तब से जुड़े हैं, चिट्ठियों से कार्यक्रमों की फरमाइश है और कार्यक्रम सुनते थे, चिट्ठियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देते थे, तो बड़ा मजा आता था चिट्ठी लिखने में। अब तो खैर फटाफट करवाना है, इधर बात भेजो, इधर अपना गाना बजा,
0: बस बस बस इधर आपने फरमाइश
1: की। हमारे लिए ये फायदेमंद नहीं है दीदी, क्योंकि मेरे पास हम एंड्रॉइड मोबाइल यूज नहीं करते, तो अपना छोटा जो कीपैड फोन है उसी से काम चलाते हैं। लेकिन मित्रों के माध्यम से व्हाट्सएप के कार्यक्रमों में व्हाट्सएप भेजते हैं, शामिल हो जाता है तो खुशी होती है, नहीं शामिल होता है थोड़ा सा।
0: जी जी जी बिल्कुल। और
1: सबसे पहले तो अब क्योंकि रक्षाबंधन बिल्कुल नजदीक है, तो आकाशवाणी मथुरा परिवार को, सभी श्रोताओं को और खासकर भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
0: जी जी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
1: कहते हैं राखी के ये धागे, ये गाने के बोल हैं, कहते हैं राखी के ये धागे,

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: हाँ जी, परिचय दे दीजिए अपना।
1: विसावा से विजय कुमार कश्यप बुलंद दीदी। राधे राधे। हाँ
0: राधे राधे जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ हम तो बढ़िया हैं। और आप सुनाइए बहन जी, कैसी हो आप? खाना खा लो, पहले आ जाओ।
0: खाना खा लें?
1: हाँ
0: बिल्कुल खा लेते, आज एकादशी भी है, सोमवार भी है, अब कैसे खाएं?
1: चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ ले आऊँ खाने के लिए।

0: मिठाई वगैरह।
1: अच्छा आपने कह दिया और बस हमने पा लिया।
0: अब तो देखो बहन जी, मारी माता वो मारी बहन जी भी आएंगी राखी बांधने के लिए।
1: बहुत अच्छी बात है, ये तो पर्व ही इतना खुशियों से भरा हुआ है। बहन भाई से मिलती हैं और पूरे घर में एक खुशी का, एक उत्सव का माहौल बन जाता है।
0: भाई
1: तो
0: बहन का प्यार है ये तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये प्यार ऐसे ही बना रहे और प्रगाढ़ता इस रिश्ते में निरंतर बढ़ती रहे। और क्या सुनना चाहेंगे बताइए।
0: आप नहीं आएंगे राखी बांधने की? हम भी तो भाई हैं आपके।
1: अब देखो भाई, भाई तो मेरे एक हैं जो मतलब जिन्हें बचपन से राखी बांधी है, अब उन्हें
0: जी
1: छोड़कर आना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ मन की राखी आप तक जरूर पहुंचेगी। ऐसा मान लीजिएगा कि मैंने आपको राखी बांधी है।
0: मैंने आपके लिए पायल लेनी है बहन जी।
1: अरे नहीं भैया, आपका कहना कि आपने मुझे अपनी बहन माना इतना काफी है, बस आपका जो प्रेम है वो बना रहे और बस ऐसे ही हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से बातचीत होती रहे और आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे।
0: मुझे पहले मेरे बच्चे हैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। पहले मैं
1: बिल्कुल लीजिए भैया।
0: ईसु हर्ष खुशी, मेरी माता जी हैं गीता देवी, मेरी पत्नी है पूनम और मेरी मेरी बहन का नाम है लता।
1: जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: गाना गीत सुनना मुझे। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दोसार से संसार बांधा है, ये वाला गाना।
1: जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आपने फोन किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: राधे राधे बहन जी।
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी मैम, ठीक? आप सब ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ठीक तो हैं, लेकिन अब ये तो बताना पड़ेगा आपको कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी, महिपाल सिंह बोल रहा हूँ, नगरा देवी सिंह
0: स्वागत है महिपाल जी कार्यक्रम में, कैसे हैं
1: से। बस बढ़िया है मैम, कृपा है आपकी।
0: जी। कर क्या रहे हैं इस वक्त
1: आप फिलहाल तो मैम कुछ नहीं कर रहे, खेती बाड़ी करते हैं।
0: जी? बहुत बढ़िया। और ये जो चौमासा जिसे हम कहते हैं, ये
1: जी,
0: बिल्कुल खेती बाड़ी करने वालों के लिए तो बड़ा आराम का समय है, और इस समय तो बस अच्छा अच्छा बनवाइए घर पे, खाइए और आनंद लीजिए, क्योंकि फिर पूरे साल मेहनत करने का जो समय हो जाता है आगे का। तो अभी तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो
1: रक्षाबंधन
0: हाँ, तो बस
1: नजदीक
0: कोशिश कीजिए कुछ अच्छा अच्छा बनता रहे रसोई में, और
1: मैम।
0: बस आनंद लेते रहिए गीत संगीत का भी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: जी मैम, जी मैम,
0: जी बताइए क्या सुनेंगे।
1: जी मैम, सावन का ही कोई बढ़िया सा गीत सुनवा दीजिए।
0: ठीक है,

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैम, लड्डू
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं? लड्डू?
1: बोल रही
0: कहाँ
1: हूँ मंडी चौराहे
0: से?
1: से। मंडी चौराहे से।
0: अच्छा, तो लड्डू कितनी उम्र है तुम्हारी?
1: 7।
0: 7 साल की हो? स्कूल जाती हो?
1: हाँ मैम,
0: तो आज क्या सुनोगी?
1: बाहुबली का गाना सुनूंगी। उसकी बोल है, बाहुबली का गाना बांसुरी बजाइए नंदलाला कन्हैया।
0: ठीक है,

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

आंखें बंद हो तो क्या किसी की दुनिया तो रोशन हो सकती है। आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं साथियों, ये सपनों की खिड़की हैं। और अगर हमारे जाने के बाद भी किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर ये रह जाएं, तो इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। साथियों नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए फिल्म संगीत के इस सफर में हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म संगीत के इस सफर में हम किसी न किसी विषय पर आपसे चर्चा करते हैं, तो आज हमारी चर्चा का विषय है नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जो कि प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस दौरान साथियों लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है और मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जाते जाते ऐसा काम कर जाना किसी अंधेरी आंख में उजाला भर जाना।

साथियों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं नेत्रदान पखवाड़े के बारे में। नेत्रदान आखिर है क्या? श्रोता साथियों, अक्सर हम आँखें दान करने की बात सुनते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। क्या पूरी आँख किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है? दरअसल नेत्रदान के बाद कॉर्निया यानी आँख का पारदर्शी सामने वाला हिस्सा ज़रूरतमंद व्यक्ति के कॉर्निया प्रत्यारोपण में उपयोग किया जा सकता है। कॉर्निया की बीमारी या क्षति के कारण जिन लोगों की दृष्टि चली गई है उनके लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण दृष्टि लौटाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथियों, भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे लोगों के लिए दान के लिए कॉर्निया बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नेत्रदान का अर्थ है मेरी आंखों की रोशनी मेरे बाद किसी और की जिंदगी की रोशनी बन जाए। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो साथियों, जिंदगी सचमुच एक पहेली है। कब किस मोड़ पर सफर थम जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अपने पीछे हम क्या छोड़कर जाते हैं यही हमारे जीवन को अर्थ देता है। यानी एक नेत्रदान दो जिंदगियों में रोशनी, एक महत्वपूर्ण संदेश श्रोताओं तक आज पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो ज़रूरतमंद लोगों को दृष्टि मिल सकती है, क्योंकि दोनों आँखों के कॉर्निया अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के लिए उपयोग किए जा सकते हैं यदि वे चिकित्सकीय रूप में उपयुक्त हों। एम्स और सरकारी जागरूकता अभियानों में इसी संदेश को साथियों आज प्रमुखता दी गई है। सोचिए, एक तरफ किसी परिवार का अपना प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से विदा हुआ तो दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शायद वर्षों से दुनिया को साफ साफ नहीं देखा और उस विदाई के बाद भी किसी दूसरे

तेरे घर में पहली बार रोशनी पहुंच जाए, इससे बड़ा मानवीय रिश्ता क्या होगा। मौत के बाद भी जिंदगी का सिलसिला रहे, मेरी आंखों से किसी की दुनिया रोशन रहे।

साथियों, क्या हर उम्र में हर उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? यहाँ भी कई भ्रांतियाँ हैं। लोग सोचते हैं कि केवल जवान और बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। सरकारी और चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार उम्र, लिंग या कुछ सामान्य स्वास्थ्य स्थितियाँ अपने आप नेत्रदान के लिए अयोग्य नहीं बनाती। अंतिम उपयुक्तता चिकित्सा परीक्षण

के बाद तय होती है। इसीलिए उम्र नहीं, इच्छा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ नेत्रदान की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, अपने परिवार को भी अपनी इच्छा जरूर बताएं। क्योंकि मृत्यु के बाद समय पर आई बैंक अधिकृत टीम को सूचना मिलना बहुत जरूरी होता है। यह जानकारी आप हमारे रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करके विशेष रूप से प्राप्त करें। नेत्रदान के लिए साथियों, मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके संबंधित आई बैंक या अधिकृत संस्था को सूचना देना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी जानकारी के अनुसार कॉर्नियल ऊतक को सामान्यतः मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर प्राप्त करना होता है। परिवार को घबराने की जरूरत नहीं होती, प्रशिक्षित टीम पूरी प्रक्रिया सम्मान पूर्वक करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेत्रदान से मृत व्यक्ति के चेहरे की पहचान खराब नहीं होती। इसीलिए समाज में फैली भ्रांतियों के कारण इस महान कार्य से पीछे न हटें। अगर आपके जाने के बाद आपकी आंखें किसी अनजान व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर दे सकती हैं, तो क्या आप नेत्रदान करने का संकल्प लेना चाहेंगे? जरा सोचिए, हम जीवन भर अपने लिए कितना कुछ जमा करते हैं, घर, कपड़े, धन, सामान, लेकिन जाते समय इसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। तो क्यों ना जाते जाते किसी के लिए रोशनी छोड़ जाएं? धन दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन नेक काम की रोशनी किसी की जिंदगी में लंबे समय तक रहती है। साथियों, हो सकता है किसी के जीवन में अंधेरा हो और हमारे एक छोटे से निर्णय से उसके जीवन में उजाला लौट आए। कई भ्रांतियां हैं कुछ बातों को लेकर, जैसे मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए मैं नेत्रदान नहीं कर सकता। जरूरी नहीं अंतिम निर्णय चिकित्सकीय जांच के आधार पर होता है। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। साथियों, सिर्फ चश्मा पहनना अपने आप में नेत्रदान की मनाही नहीं है। मुझे कोई बीमारी है इसीलिए मेरी आंखें किसी काम की नहीं होंगी, ये भ्रांति। हर व्यक्ति की साथियों स्थिति अलग होती है, उपयुक्तता विशेषज्ञ टीम तय करती है। और नेत्रदान से शरीर या चेहरे को नुकसान पहुंचता है, तो आपको बता दें, प्रक्रिया प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा सम्मान पूर्वक की जाती है और सामान्यतः चेहरे की बनावट को इस तरह प्रभावित नहीं करती कि अंतिम दर्शन संभव ना हो। इसीलिए याद रखिए, भ्रम नहीं जानकारी अपनाइए और नेत्रदान का संकल्प उठाइए।

श्रोता साथियों, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाला यह पखवाड़ा केवल एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि इंसानियत को जगाने का अवसर है। हम में से कोई नहीं जानता कि जीवन की अंतिम घड़ी कब आएगी, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी किसी और की जिंदगी में जारी रह सकती है। जाते जाते कोई ऐसा काम कर जाना, अंधेरी आंखों में उजाला भर जाना। दुनिया से विदा तो एक दिन सबको होना है, क्यों ना किसी की दुनिया का हिस्सा बन जाना। साथियों, नेत्रदान का संकल्प लीजिए, परिवार को बताइए, भ्रांतियों को दूर भगाइए और किसी की जिंदगी में रोशनी बन जाइए। इसी उम्मीद के साथ आपकी आंखें बंद हों तो भी किसी और की दुनिया में उजाला रहे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, हार जाना जिंदगी की हार नहीं, हार मान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, उम्मीद का हाथ थामे रखिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ श्रोता साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत बात और SMS में। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, वक्त हो चला है आपके संदेशों की ओर चलने का, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का आपकी फरमाइश पर ये पहला गीत।

साथियों, आइए पढ़ लेते हैं आपके संदेश। अनारकली बाजार जगराहो पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी हमसे जुड़ चुके हैं। हमें संदेश मिल चुका है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, जिला खरगोन, सनावद, मध्य प्रदेश से आप हमसे जुड़े। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप भी हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे अगले फरमाइश करता हैं अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी हमसे जुड़ चुकी हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी, अर्चना, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना, जिला खरगोन, सनावद, मध्य प्रदेश से आप हमसे जुड़े। श्रोता साथियों से निवेदन है, कृपया एक बार मैसेज करके बार बार उस मैसेज को ना भेजें, आपका समय भी खराब होता है और हमारा भी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब के पप्पू राजा, खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी, पूरा खुशदिल परिवार हमसे जुड़ चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं धानोरा पिटाली, तहसील नांदुड़ा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र के भगवान पाटिल, मंगेश और सचिन पाटिल। संदेश भेजा है हमें तिरुपति नगर के नांदुड़ा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत और सागर कटक ने, और साथ ही जुड़े हैं दिंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का संदेश भी हमें मिला। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष हमसे जुड़े पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। अगला संदेश हमारे पास आया है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबी सिया, नेहरू चौक पैंठड़ से आप हमसे जुड़े। सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव जालना शहर से ये संदेश हमें प्राप्त हुआ। मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या, अन्नू, मुकेश का संदेश हमें मिला उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से। हमारे अगले फरमाइश करता हैं मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम सुरलकर, दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा का संदेश भी हमें मिला। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ के राजपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं उमाली से उद्धव धोरण और अनूप कुमार, राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया हमसे जुड़े हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से। पीएस हांवकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर का संदेश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं झज्जर हरियाणा के बिट्टू, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी और राजेश, राकेश, ऋषिता का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं

येलांदू तेलंगाना से। राजेश खन्ना, चिन्ना, अनीता राज, सुनीता राज, भानु राज खन्ना और अमित अमी खन्ना हमसे जुड़ चुके हैं। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से आपने हमें संदेश भेजा। नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा के अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे का संदेश मिला। भाटा पारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी और पायल जोशी भी हमसे जुड़े। ये संदेश प्राप्त हुआ गणेशपुर, गंजडुडवारा, एटा, उत्तर प्रदेश के एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान का। तो साथियों, आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

साथियों, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन जिला, दुर्ग छत्तीसगढ़ के बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, साइना, निवान शर्मा। अगला संदेश हमारे पास आया है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके का। हमारे अगले फरमाइश करता है नसवाला चौक मलकापुर के संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीर सागर, संजय कुमार चौहान। हमसे जुड़ चुके हैं बुलढाड़ा महाराष्ट्र के नरेंद्र नारवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश कुमार। संदेश मिल चुका है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान के लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी का। डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू पटेल नगर मलौट से हमसे जुड़े। संदेश मिला उत्तम नगर दिल्ली के बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। हमारे अगले फरमाइशकर्ता ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, फुटानी चौक, नरहन एस्टेट से हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी, शाहूनगर यवतमाल से। अगला संदेश मजनू कटीला से, कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी के उमंग मलिक, आकांक्षा, माही मलिक भी हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे पास संदेश मिल चुका है मधुबनी बिहार के नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी देवी, क्रांति सिंह, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर साह, शंभू साह, करिया गुप्ता और लबरी गुप्ता हमसे जुड़े। हमारे अगले फरमाइश करता हैं गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। अक्रम हुसैन, प्रिंस उर्फ डाग बाबू, बेगम इशरत, वसीम अक्रम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी हमसे जुड़े हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, और कलेर बिहार के मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार के काय रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण, जयशी, सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा हमसे जुड़े जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय हमसे जुड़ चुके हैं और संदेश मिल चुका है दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। चंडीगढ़ के सतीश अनेजा और विमला अनेजा का संदेश भी प्राप्त हुआ। अगले फरमाइशकर्ता जो कि हमसे जुड़ चुके हैं भावी निमगांव महाराष्ट्र के श्रीराम गोधली, वैष्णवी, उषा गोधली और युवराज गोधली, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमसे जुड़े। संदेश मिल चुका है दादरी गेट भी

0: मानी के कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा का। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं तालुका निवासा खोपटी महाराष्ट्र के पंडू लोहार, चंद्रकला और देवीदास पोपलघट। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम सद्दाम सहारनपुर से हमसे जुड़े। संदेश मिल चुका है सौंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार देवी का, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन का। संदेश भेजकर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा और पूनम ज्योति शिवांश वर्मा। नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़े। राजधानी दिल्ली के आरएस स्वीटी, आईके इंदर और स्वीटी छावड़ा का संदेश भी मिला। संदेश प्राप्त हो चुका है करीमनगर के लक्ष्मी नारायण विजया अभिनय साई किरण का। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार, सेन प्रभा देवी, लकी विक्की, नानू रविंद्र, रौनक हमसे जुड़ चुके हैं। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।
1: ला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

हमारे अगली फरमाइश करता हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश। हमसे जुड़ चुके हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान अब्बासी, समस्त अब्बासी परिवार। अगले फरमाइश करता है गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइश करता शेख नजमा बेगम, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा शेख, माहिरा नौमान शेख, सुलेमान और शेख मोहम्मद कलीम, नाला सोपारा, मुंबई से आपका संदेश हमें मिला। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन का संदेश हमें मिल चुका है। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का और कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। चलते चलते बस यही कहूंगी कि जिंदगी में हर दिन एक नया पन्ना लेकर आता है। जरूरी नहीं कि हर पन्ना हमारी पसंद का हो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत हो। बस इतना याद रखिए कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन उम्मीद और हौसला रखने वाला इंसान कभी सच में नहीं हारता। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपके चेहरे पर मुस्कान यूं ही बनी रहे, इसी खूबसूरत दुआ और उम्मीद के साथ दीजिए हमें इजाजत। फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं सुरेश चंद्र गोस्वामी, संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं ब्रजभूषण शर्मा, ढोलक पर संगत योगेश शर्मा और पर्कशन पर कृष्ण कुमार शर्मा हैं।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: रेम झेम रेम झेम चलो बरसा में।
1: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यही समाप्त होता है। आज के कलाकार थे सुरेश चंद्र गोस्वामी, संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर ब्रजभूषण शर्मा, ढोलक पर संगत दी योगेश शर्मा ने और परकशन कृष्ण कुमार शर्मा का था। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से UPI के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने UPI के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
3: UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। UPI की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज UPI प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और

0: श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अपराह्न 1:10 पर यानी अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समवेत स्वरों में देशगान। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें होगी चर्चा शिव आराधना का पर्व श्रावण मास एवं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता श्रावण मास के तीज त्योहार और परंपराएं, जानकारी देंगी रजनी खंडेलवाल। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी जया आर्य। अपराह्न 1:45 पर फिल्म संगीत का ले सकेंगे आप आनंद। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित। अपराह्न 2:30 पर आप सुन सकेंगे हमारी दूसरी सभा, आरंभ होगी संध्या 5:30 पर। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात के अंतर्गत डॉक्टर कृपानंद वारियर स्वामीगल जयंती एवं नेत्रदान महादान विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे कानूनी वार्ता के तहत सूचना का अधिकार जाने विषय पर, जानकारी देंगी सपना सारस्वत। संध्या 6:10 पर समवेत स्वरों में आप सुन सकेंगे देशगान।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में भक्त कथा के अंतर्गत भक्त अजामिल के विषय में जानकारी देंगे कथाकार जितेंद्र कुमार शर्मा। फिल्मी व गैर फिल्मी संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे 6:30 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी 6:50 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

संध्या 7:20 पर लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे और फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:00।

रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम मनी टॉक और रात्रि 9:45 पर कार्यक्रम मंथन दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण, जिसमें होगी चर्चा हमारे पारस्परिक खेल के विषय पर, और साथ ही आप सुनेंगे लघु वार्ता ओबी आधारित पुराने खेल नया कलेवर, जानकारी देंगे आलोक सिंह। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धियां, वार्ताकार होंगे हेमेंद्र कृष्ण शर्मा। मिशन ओलंपिक 2036 विषय पर होगी वार्ता आशाएं और संभावनाएं, जानकारी देंगे शरद श्रीवास्तव। कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेल समाचार विजय यादव के द्वारा, आलेख वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जुगलबंदी में आप उस्ताद आबिद हुसैन खां का सितार वादन सुन सकेंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देशगान। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालू। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं जया आर्य।

0: हर हर हर महादेव।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का ये अंक हम महादेव के इस उद्घोष के साथ शुरू करते हैं। मैं महादेव की भक्त और आप सभी की प्यारी रेडियो सहेली स्वागत करती हूँ अपनी सभी श्रोता बहनों का और जो भी श्रोतागण इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन सभी का FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, सावन का पावन पर्व चल रहा है जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। ये महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और श्रद्धापूर्ण महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति के लिए विशेष रूप से समर्पित है। सावन का नाम सुनते ही मन में हरियाली, वर्षा, मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के जयकारे और शिव भक्तों की आस्था का दृश्य उभर आता है। यही कारण है कि श्रावण मास को शिव आराधना का पर्व कहा जाता है। श्रावण मास में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उन्हें बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल तथा अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसीलिए सावन के सोमवार का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सावन के इस महीने में अनेक श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं। भक्त प्रातः काल स्नान करके मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करते हैं तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा भी आयोजित होती है जिसमें सभी शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर भगवान शिव के मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। इस यात्रा में श्रद्धा, अनुशासन और सेवा की भावना देखने को मिलती है। भगवान शिव केवल शक्ति और संहार के देवता ही नहीं बल्कि त्याग, करुणा, सरलता और कल्याण के प्रतीक भी हैं। उनके व्यक्तित्व से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों के बीच भी धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव का शांत स्वरूप हमें अहंकार से दूर रहने और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। श्रावण मास प्रकृति के लिए भी विशेष महत्व रखता है। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है और वातावरण सुंदर एवं मनमोहक बन जाता है। इस प्रकार सावन हमें धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति से प्रेम और उसके संरक्षण का संदेश भी देता है। इसीलिए अंत में श्रोताओं, श्रावण मास केवल पूजा पाठ और व्रत का महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और सद्भावना का पर्व है। आइए इस पावन पर्व पर हम भगवान शिव की आराधना के साथ अपने जीवन में सत्य, करुणा, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाएं और समाज में प्रेम एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव।

श्रोताओं, भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और दृष्टिहीन लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये पखवाड़ा हमें ये समझाने का अवसर देता है कि मृत्यु के बाद भी हमारी आँखें किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में उजाला ला सकती हैं। आँखें हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके माध्यम से हम प्रकृति की सुंदरता, अपने प्रियजनों और इस संसार को देख पाते हैं। लेकिन अनेक लोग विभिन्न कारणों से दृष्टिहीनता का सामना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नेत्रदान आशा की एक किरण बन सकता है। नेत्रदान के माध्यम से मृत व्यक्ति की आंखों के उपयोगी ऊतक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर जागरूकता पैदा करना और इससे जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना है। कई लोग नेत्रदान को लेकर भ्रम और संकोच रखते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि नेत्रदान एक महान सामाजिक और मानवीय कार्य है। इसके लिए व्यक्ति अपने जीवन काल में नेत्रदान की इच्छा व्यक्त कर सकता है और अपने परिवार को भी इसकी जानकारी दे सकता है। नेत्रदान केवल किसी व्यक्ति को दृष्टि देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये मानवता और परोपकार की भावना का प्रतीक भी है। हम अपने जीवन में दूसरों की सहायता अनेक तरीकों से करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में प्रकाश लाना एक अत्यंत पुण्य और प्रेरणादायक काम है। इस अवसर पर हमें स्वयं जागरूक होने के साथ साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी नेत्रदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे नेत्रदान से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करें और अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। इसीलिए श्रोताओं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हमें एक सुंदर संदेश देता है। जीवन समाप्त होने के बाद भी मानवता की सेवा जारी रखी जा सकती है। आइए हम नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाएं और संकल्प लें कि हम अपने समाज में दृष्टिहीनता के प्रति संवेदनशीलता और मानव सेवा की भावना को बढ़ावा देंगे। नेत्रदान करें, किसी के अंधकारमय जीवन में रोशनी भरें।

हमारे यह ब्रजमंडल में श्रावण मास बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह महीना पूरे उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। इस मास में हमें आनंद की बहुत ही अनुभूति होती है। श्रावण का महीना मई जून की तपती गर्मी के पश्चात जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। वर्षा ऋतु में पड़ने वाले इस माह का बहुत ही महत्व है। इस माह में धीमी धीमी बारिश होती है, जिस कारण सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, तो इस सुंदर दृश्य को देखकर बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्रावण मास में इसके साथ साथ भोले बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व है। यह मास भोले बाबा को भी समर्पित है। तो दूसरी ओर ब्रज में सभी मंदिरों में सुंदर हिंडोले में राधा कृष्ण को भी झूला झुलाया जाता है। सभी मंदिरों में झूले पड़ते हैं, साथ ही प्रकृति का वास्तविक अनुभव मंदिरों के अंदर कराने के लिए विभिन्न रंग की घटाओं को सजाया जाता है। इसी माह में एक तरफ विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन पूरे ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज हमारे यहाँ विशेष महत्व होता है इसका। ब्रज में हरियाली तीज बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। यहाँ सभी स्त्रियाँ हरियाली तीज की तैयारी 4-5 दिन पहले से ही करने लगती हैं, बाजार में खरीदारी करने लगती हैं। इस दिन सभी बहनें हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर तथा पूरा सोलह श्रृंगार करती हैं। इस प्रकार हरियाली तीज मनाई जाती है। पूरे ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाए जाते हैं। इस माह में महिलाएं अपने अपने मायके भी जाती हैं तथा घर बाग बगीचों से में झूला डालकर अपनी बहनों और सखियों के साथ झूला झूलती हैं। इसी प्रकार हमारी राधा रानी भी झूला झूलती हैं और हम इस छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और राधा रानी को बधाई देते हुए गाते हैं।

उन्हें चांदी के हिंडोले के दर्शन होते हैं। तो उस दिन शाम को मंदिर के नीचे छतरी, सफ़ेद छतरी में खुले में दर्शन होते हैं। फिर प्रतिदिन शाम को रात रक्षाबंधन तक सोने चांदी के हिंडोले में दर्शन कराए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे नंदगांव में नंद मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी तक हिंडोले के दर्शन होते हैं। सभी मंदिरों में इस तरह से हिंडोले सजाए जाते हैं। इसी प्रकार वृंदावन के सभी मंदिरों में सोने चांदी के तथा लता पता के फूलों के हिंडोले सजाए जाते हैं। इसमें फलों के भी बंगले बनते हैं और दर्शन कराए जाते हैं। हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में वर्ष में केवल एक दिन ही हरियाली तीज के दिन ही सोने चांदी के भव्य हिंडोले के दर्शन होते हैं। प्रभु के इन दर्शन को पाकर सभी भक्त निहाल हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, उसमें भी ठाकुर जी को पूरे श्रावण महीने में सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान कराया जाता है तथा माह के दौरान कई दिनों तक विभिन्न रंगों की घटाएं जैसे काली घटा, पीली घटा, सफ़ेद घटा, गुलाबी घटा और सभी रंगों की घटाएं प्राकृतिक अनुभव मंदिर के अंदर कराया जाता है। और इसी प्रकार ठाकुर जी को भी झूला झुलाया जाता है।

तो इस प्रकार हम राधा रानी को बधाई देते हुए यह बधाई गीत गाते हैं। इसी प्रकार श्रावण के महीने में वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, बलदेव में विशेष डोले सजाए जाते हैं। कुछ मंदिरों में पूरे सावन में तो कुछ महीनों मंदिरों में हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक हिंडोले में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार राधा रानी मंदिर बरसाना में भी हरियाली तीज के दिन सुबह

0: बिहारी। तो इस प्रकार सभी मंदिरों में और हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में झूला झुलाया जाता है। इसी प्रकार एक वृंदावन में शाहजी मंदिर है, वहाँ पर भी बसंती कमरा सावन महीने में ही खुलता है। सावन माह और रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व ही भक्तों के लिए यह कमरा खोला जाता है और यहाँ पर पीले रंग के दर्शन होते हैं और बसंती कमरे भी सजाए जाते हैं। श्रावण मास ब्रज के सभी शिव मंदिरों में प्रत्येक सोमवार को विभिन्न प्रकार के बंगले सजाए जाते हैं। सभी शिव मंदिरों में जैसे गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर, रंगेश्वर, गलतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, महादेव पर पूरे श्रावण मास में भक्तजन शिव पूजा करते हैं। भक्तजन श्रावण के व्रत भी रहते हैं और सभी शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं। श्रावण माह में मौसम बहुत ही सुंदर होता है, नन्ही नन्ही फुहार पड़ती हैं। इन फुहारों में झूला झूलने का आनंद ही दुगना हो जाता है। इसी माह में कई तरह के घेवर जैसे मलाई घेवर, सादा घेवर, पनीर, फैनी खाने का भी बहुत ही आनंद है। तो इस प्रकार हम सभी मिलकर श्रावण मास का महीना मनाते हैं और यह मास पूरा त्योहारों से भरा हुआ होता है।
1: बहनों, आज के कार्यक्रम का अंग समर्पित था सावन और भगवान शिव पर। इसीलिए कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को जानकारी हमने दिलवाई श्रावण मास के तीज त्योहार और परंपराओं के विषय पर। इसकी जानकारी हमें दे रही थी रजनी खंडेलवाल। आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम का अंक आपको पसंद आया होगा। शुरुआत के व्यवधान के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वक्त है आपसे अनुमति लेने का। अगली बार पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए, जैसा कि मैं अपने श्रोताओं को हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिलहाल के लिए अपनी सखी को विदा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जया आर्य ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आज और कल के इस गीत को। इस गीत को अपनी आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा साहिर ने और संगीत रवि का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया के इस गीत के लिए। इस गीत को लिखा राजा मेहदी अली खान ने और संगीत मदन मोहन का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

में फिल्म मेरे हम सफ़र के इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: For India, Manav Sutar took India's fifth wicket, dismissing Captain Dhananjay De Silva for 8 runs. India looking for quick wickets to bowl out the host and enforce a follow-on. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Priyanka Arora. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री

0: हैं बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
3: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
4: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
3: स्पिरिट ऑफ इंडिया'स जर्नी।

0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
1: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
2: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
1: We want to create global स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,000,000,000 अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी

0: की पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी।

0: यार बड़ी मजेदार बात।
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं, और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज डॉक्टर थिरुमुरुगा कृपानंद वारियर स्वामीगल जयंती है। ये हर साल 25 अगस्त को मनाई जाती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस दिन को राज्य समारोह यानी स्टेट इवेंट के रूप में घोषित किया गया है। कृपानंद वारियर स्वामीगल भारत के तमिलनाडु राज्य के एक महान शैव आध्यात्मिक गुरु, लेखक और भगवान मुरुगन के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म 25 अगस्त 1906 को तमिलनाडु के वेल्लूर के पास कयंगलूर गांव में हुआ था। उन्हें उनके अद्भुत प्रवचनों और ज्ञान के कारण अरुलमोझी आरसू यानी शुभ वचनों के राजा और

वक्कल ज्योति जैसी उपाधियों से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें जनता के द्वारा 64वें नैनमार यानी शैव संत के रूप में भी सम्मानित किया गया। उन्होंने संगीत और कला शिवम यानी धार्मिक कहानियों के गायन और व्याख्या के माध्यम से आम लोगों तक हिंदू धर्म, रामायण और महाभारत के संदेशों को बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाया। जब तमिलनाडु में नास्तिकता का आंदोलन चरम पर था, तब उन्होंने अपने तर्कों और सौम्य उपदेशों से आस्तिकता और सनातन परंपरा की रक्षा की। उन्होंने कई जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। उनका महाप्रयाण 7 नवंबर 1993 को हुआ था। ऐसे महान संत और ऐसे व्यक्तित्व को हम सभी नमन करते हैं।

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं एक कानूनी वार्ता जिसका विषय है सूचना का अधिकार जाने। वार्ताकार हैं सपना सारस्वत।
1: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाया है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। लोकतांत्रिक देश की इस प्रणाली में नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि लोक प्राधिकारी गण सरकारी कामकाज कैसे कर रहे हैं। जनता यदि जागरूक है और सरकार के कामकाज पर नजर रखती है तो इससे भ्रष्टाचार व निरंकुशता पर अंकुश लगता है और राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनती है। इससे ये जरूरी था कि जनता को सूचना का अधिकार दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अधिकार को भारतीय संविधान की धारा 19(1)(a) के अंतर्गत मूलाधिकार माना है। चूंकि कुछ बातें संवेदनशील होती हैं और सरकार का कुशलता से संचालन हो सके, इसके लिए जरूरी है कि गोपनीयता बनाई रखी जाए। एक तरफ जनता को सूचना का अधिकार, वहीं दूसरी ओर राज्य की गोपनीयता, ये दोनों परस्पर विरोधी हित हैं। अतः इन दोनों में परस्पर सामंजस्य करते हुए सन 2005 में हमारे देश में सूचना के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर कतिपय सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकार के रूप में जनता के प्रत्येक नागरिक को दे दिया गया। पिछले कुछ दशकों से देश का प्रमुख नागरिक वर्ग सूचना के अधिकार की मांग कर रहा था। आखिरकार भारत की संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति जी ने 15 जून 2005 को इस अधिनियम पर अनुमति दे दी और भारत सरकार के राजपत्र यानी गजट में यह कानून 21 जून 2005 को प्रकाशित किया गया। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अधिनियम की धारा 2(j) में कहा गया है कि किसी लोक अधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन पहुंच योग्य सूचना का अधिकार ही सूचना का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत ये बातें भी शामिल हैं कि यदि आप किसी कृति, दस्तावेज या रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों पर टिप्पणी या उनकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, जो भी सामग्री मौजूद है उसकी प्रमाणित जानकारी ले सकते हैं, आप फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट आउट के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ये सूचना कंप्यूटर या दूसरी चीज में भरी क्यों ना हो तो भी आप इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार नागरिकों को केवल प्रश्न पूछकर सूचना लेने या संबंधित दस्तावेजों या रिकॉर्ड की नकल लेने का अधिकार भी सूचना के अधिकार में शामिल है। सूचना का अधिकार यानी RTI राइट टू एक्ट अधिनियम 2(f) के अनुसार सूचना की बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें

सरकारी विभागों के साथ साथ ऐसे प्राइवेट विभागों से सूचना को शामिल कर लिया गया है जिस पर लोक अधिकारी की पहुंच हो सकती है। सूचना का अधिकार अपने आप में एक छोटा सा कानून है जिसमें मात्र 31 धाराएं हैं व 2 अनुसूची हैं। आकार में छोटा होते हुए भी यह कानून अपने विस्तार व प्रभाव में बहुत व्यापक है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में इसे क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति से ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि वो सूचना क्यों चाहता है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 की धारा 2 में ये स्पष्ट कहा गया है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से सूचना के अनुरोध करने का कारण नहीं पूछा जाएगा। मांगी गई सूचना के साथ आवेदक को केवल इतनी ही जानकारी देनी होगी जो कि उस सूचना को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो, जिसमें अपना नाम पता वगैरह ही उसे बताने होंगे। सूचना का अधिकार कानून की एक और विशेषता ये है कि सूचना मांगने पर ही सूचना देने की व्यवस्था इस कानून में की गई है। इस कानून की धारा 4 में हर लोक प्राधिकारी को इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि वो अपने अधीन रिकॉर्ड को बिल्कुल दुरुस्त व सूचीबद्ध रखेगा ताकि सुगमता से सूचना के अधिकार के अंतर्गत रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सके। कानून लागू होने के 20 दिन के भीतर उसे अपने महकमे की सारी जानकारी, कामकाज का दायरा, रिकॉर्ड रखने का तरीका, नीति बनाने व लागू करने का तरीका आदि सब बातें प्रकाशित करनी होगी और समय समय पर ऐसी जानकारियां भी उसे जारी करनी होगी ताकि आवेदन पत्र देकर सूचना मांगने की आवश्यकता कम से कम पड़े। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग होगा। इस कानून की धारा 5 में हर लोक प्राधिकरण में सूचना अधिकारियों को नामित किया करने की भी व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को नामित करने की भी व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 6 में ये बताया गया है कि सूचना के लिए आवेदन कैसे किया जाए। यदि आपको आवेदन करना है तो इसमें जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है और सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रीति से जैसे ईमेल या इंटरनेट से वहत फीस जो कि 10 रुपए कैश या बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र या तो हिंदी में या फिर अंग्रेजी या संबंधित राज्य की राजभाषा में होना चाहिए तथा प्रार्थना पत्र संबंधित महकमे के लोक सूचना अधिकारी को निवेदित किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचना का स्पष्ट विवरण अंकित करना चाहिए और आवेदक को अपना नाम व पता वगैरह भी अंकित करना चाहिए ताकि अधिकारी गण उससे संपर्क कर सके। इस अधिनियम में ये व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई आवेदन पत्र किसी अधिकारी को दिया जाए और यदि वो आवेदन पत्र किसी अन्य अधिकारी से संबंधित हो तो प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं कर दिया जाएगा बल्कि ऐसी स्थिति में अधिकारी ऐसे प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारी तक भेजेगा व इस बात की जानकारी आवेदक को भी देगा। आवेदन पत्र मिलने के 5 दिन के भीतर इस आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी तक भेज देना होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ये भी व्यवस्था की गई है कि सूचना के लिए मिले आवेदन पत्र की प्राप्ति पर लोक सूचना अधिकारी को जल्दी से जल्दी निपटारा कर देना चाहिए। हर हाल में 30 दिन के अंदर समाधान करना ही होगा। स्वतंत्रता को हमारे देश में हमारे संविधान में बहुत ही पवित्र स्थान व महत्व दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो संबंधित सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करानी ही होगी। यहाँ ये भी माना जाता है कि यदि कोई अधिकारी मांगी गई सूचना को उस समय के भीतर नहीं दे पाता है तो ये माना जाएगा कि उस अधिकारी ने आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। हमने शासन सत्ता व निकायों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने की कोशिश की है।
अधिकारियों को यह भी वादे किया गया है कि यदि कोई अधिकारी कोई प्रार्थना पत्र

0: निरस्त करता है तो उसे आवेदक को लिखित में ये बताना होगा कि प्रार्थना पत्र क्यों खारिज किया गया है और ये भी बताना होगा कि ऐसे खारिजा के विरुद्ध कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है और अपील किस अधिकारी के यहाँ पर की जाएगी। प्रारंभ में आपको ये बता दिया गया है कि सूचना का अधिकार कानून असीमित अधिकार नहीं देता। इस अधिनियम की धारा 8 में ये बताया गया है कि वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जिन्हें देने से मना किया जा सकता है। कोई ऐसी सूचना जिससे भारत की एकता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित तथा विदेशों से संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हो, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। ऐसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी जिससे अदालत का अपमान होता हो। वे सूचनाएं भी प्रकट नहीं की जाएंगी जिनसे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन होता हो। ऐसी जानकारी भी नहीं दी जाएगी जिसके जाहिर होने से किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो। ऐसी सूचनाओं को भी नहीं दिया जाएगा जिनसे अपराधों की विवेचना या अपराधियों को पकड़ने में अड़चन पैदा हो सकती है। मंत्रिमंडल के कागज पत्र व मंत्रियों के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख भी लोगों को नहीं दिए जा सकते हैं। इस अधिनियम में आम आदमी को भी MLA या MP के बराबर जानकारी लेने का अधिकार दे दिया गया है कि जिस जानकारी को संसद या विधानमंडल को देने से मना नहीं किया जा सकता हो तो इस जानकारी को आम आदमी को भी इस अधिनियम के तहत देने से मना नहीं किया जाएगा। यदि मांगी गई सूचना के लिए आवेदन पत्र निरस्त किया जाए या कानून के द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र का निपटारा ना किया जा सके तो सूचना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपील का अधिकार होगा। अपील संबंधित महकमे में सूचना अधिकारी से वरिष्ठ सूचना अधिकारी को की जा सकती है। यदि आप इस अपील या दूसरी अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 19 के तहत ये अपील की जा सकती है। यदि किसी जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर बिना किसी कारण के प्रार्थना पत्र लेने से इनकार किया है, समय के भीतर प्रार्थना पत्र का निपटारा नहीं किया है, गलत या अपूर्ण सूचना दी है, तो ऐसे में सूचना देने से नियत समय अवधि के भीतर सूचना न देने की दशा में 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जुर्माना अधिक से अधिक 25,000 रुपयों तक हो सकता है। यहाँ एक बात गौरतलब है कि सूचना का अधिकार कानून खुफिया संगठनों व फौजी संगठनों पर लागू नहीं होता, लेकिन यदि मांगी गई सूचना का संबंध भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के हनन से हो तो ये कानून फौजी या खुफिया संगठनों पर भी लागू हो जाता है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के हाथ में सूचना का अधिकार कानून का एक बहुत ही प्रभावी हथियार है। ये एक ऐसा कानून है जिसका लागू किया जाना जनता पर निर्भर करता है और इसकी पहल भी जनता को ही करनी चाहिए। जनता जागरूक हो, विषयों की जानकारी ले तो सरकारी विभागों तथा सरकार दोनों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यालय दिल्ली में है तथा राज्य सूचना आयोग का कार्यालय राज्य में होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कार्यालय लखनऊ में है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी कानूनी वार्ता सूचना का अधिकार जाने। वार्ताकार थी सपना सारस्वत और कार्यक्रम में चलते चलते आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है। अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। UPI भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले UPI की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि UPI के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। UPI की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज UPI प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर

भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक। 9:45 पर होगा कार्यक्रम मंथन। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:50 पर आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति होगी। इसमें चर्चा होगी हमारे पारंपरिक खेल ओभी पर आधारित लघु वार्ता आप सुनेंगे पुराने खेल नया कलेवर। वार्ताकार होंगे आलोक सिंह। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धियां। वार्ताकार होंगे हेमेंद्र कृष्ण शर्मा। मिशन ओलंपिक 2036 आशाएं और संभावनाएं, इस विषय पर आप जानकारी लेंगे शरद श्रीवास्तव से। खेल समाचार प्रस्तुत करेंगे विजय यादव। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का होगा और इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम भी हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त कथा भक्त अजामिल। कथाकार होंगे जितेंद्र कुमार शर्मा। शाम 6:30 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:20 पर एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम सुना जा सकता है रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी चांदनी।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सितार और सरोद पर जुगलबंदी राग जोग में, सितार पर वादक कलाकार होंगे उस्ताद आबिद हुसैन खां और सरोद पर होंगे उस्ताद शहादत हुसैन खां। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे मोहम्मद हुसैन खां। समय याद रखिएगा रात्रि 10:30। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में, 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में भक्त कथा भक्त अजामिल। कथाकार हैं जितेंद्र कुमार शर्मा।
1: जय श्री राधे। आज आपके समक्ष भक्त अजामिल की कथा सुनाए हुए जा रहे हैं, जो कि राजा परीक्षित के पूछबे पर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के नाम को वर्णन करते हुए राजा परीक्षित की जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह कथा सुनाई है। अजामिल जो कि कन्नौज में रहने वालों एक ब्राह्मण हतो, यह शास्त्रज्ञ वेद पाठी जितेंद्रिय सत्यनिष्ठ पवित्र व सद्गुणों को तो यह खजानो ही हतो, या मैं अहंकार की तनिक भी मात्रा ना हती। सबन को हित चाहे वारो परोपकार करवे वारो व आवश्यकता अनुसार ही बोले वारो। काय के गुणन में कबू दोष ना निकारो कर। एक दिन जे ब्राह्मण अपने पिता के कहे सो वन में फल फूल और समिधा की लकड़ियां ले भी गयो। जब यह लकड़ी लेकर लौट रहे हतो, तब याने देखो कि एक भ्रष्ट शूद्र जो कि बहुत ही कामी और निर्लज्ज हतो, शराब पी के काई वेश्या के संग में विहार कर रहे है। यह दृश्य को देख के अजामिल मोहित हो सहज ही काम के वशीभूत है गयो। जबकि अजामिल ने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग सो विचलित मन को रोकबे को बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह असमर्थ ही रहो। अजामिल की शीघ्री शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट है गई। फिर यह वाई वेश्या को ही निरंतर चिंतन करवे लगो। वाके लिए वाके पसंद के वस्त्र और श्रृंगार के लेप लेकर के जाए भी लगो। इन्हीं कामन में या अजामिल ने अपने पिता की शीघ्री संपत्ति को नाश कर दियो। वह वैश्या ने या ऐसा अपने वश में कियो कि याने अपनी विवाहित पत्नी को ही त्याग कर दियो। वह घर से निकार दियो और तो और याने अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकार दियो और वाई वैश्या के संग में रहन लगो। अच्छे और बुरे धन को लेकर के आतो। फिर वह वैश्या और वाई के परिवार को पालन कियो करतो। शास्त्राज्ञा को उल्लंघन करबे के कारण जे सत्पुरुषन सो निंदित हु भयो, वा वैश्या सो या अजामिल की 9 संतान भई। 10वीं बार या अजामिल की काम वृत्ति के चलते जब वह वैश्या फिर सो गर्भिणी भई, तब उन्हीं दिनन में अजामिल के गांव में कछु साधु संत आए पधारे। गांव में आए के वे पूछवे लगे कि हमें काई ऐसे भक्त को घर बताओ, जाके यहाँ हमें आराम करबे को स्थान मिले और भोजन आदि की व्यवस्था हो है सके। तब वहाँ के नव युवकन ने हास्य करबे को अजामिल को घर बताए दियो।

पूछते पूछते अजामिल के घर के बाहर पहुंच गए, आवाज दई। तब अंदर सो वही वेश्या बाहर निकल के आई। वह साधुवन के दिव्य स्वरूप को देख के बहुत प्रभावित भई और सोचवे लगी कि इनकी कछु सेवा करनी चाहिए। माने बिनकू कहो कि महाराज भीतर पधारो। भीतर बुलाए के माने बिनकू खूब सत्कार कियो, भोजन करायो। साधु वाकी सेवा सो बहुत प्रसन्न भई और वासों बोले कि बेटा तू हमसों कछु मांग ले, हम तेरी सेवा सो बहुत प्रसन्न हैं। या परवाने साधुओं सो कहीं कि महाराज आप हमें कोई कल्याण को उपाय बताओ, सो हम कल्याण के अधिकारी बन सकें। फिर वे वासों बोले कि बेटा अभी तू गर्भिणी है, जब तेरी या संतान को जन्म हुए तब याको नाम तू नारायण रखियो। यह वचन सुन के वने साधुन को प्रणाम कियो और बोली जी महाराज ऐसो ही करूँगी। समय व्यतीत होवे के साथ वाके घर में संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति भई। वा वैश्या को उन साधुन की बात भली भांति याद हती। तभी वाने अपने या पुत्र को नाम नारायण रखो, या नारायण नाम के पुत्र के संग अजामिल को विशेष प्रेम हतो। अजामिल नारायण को अपने ही संग में भोजन करायो करतो, घुमाए भी ले जातो और यही को चिंतन करतो रहतो। एक दिना या अजामिल के पाप कर्मन के चलते जब याय यमदूतन ने देखो कि याने बहुत ही ज्यादा निंदनीय कर्म किए हैं और कोई प्रायश्चित हु नाई कियो, तब यमदूत याय लेवे के लिए अजामिल के सामने आए पहुंचे। आए के यासो कही कि तेरे पाप कर्मन की अब अति होवे के कारण तोय हमारे संग में चलना होएगा। जब अजामिल ने यमदूतन के मुख सो यह शब्द सुने तब घबराए के वाने अपने पुत्र नारायण को आवाज दई कि नारायण नारायण। और जैसे ही यह शब्द भगवान के पार्षदन ने सुने तभी वह डरो मत कहते भई वहीं पहुंच गए और बलपूर्वक यम के फंद को काट के अजामिल को बचाए लियो। यह दृश्य देखकर यमदूत पार्षदन सो बोले कि हे देवताओं आप तो जानो ही हो कि यह कितना बड़ा पापी है, याई लिए हम याए भगवान यमराज के पास में ले जा रहे हते। वहाँ ये अपने पाप कर्मन को दंड भोग के शुद्ध है जातो, पर आपने आए के या के फंद काट दिए, ऐसो आपने क्यों कियो? या पर भगवान के पार्षद बोले कि यमदूतों यह बहुत खेद और आश्चर्य की बात है कि धर्म ज्ञानिन की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हो है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी और परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता को व्यवहार करन लगे तो फिर प्रजा कौन की शरण लेगी? सत्पुरुष जैसो आचरण करे हैं साधारण लोग भी वैसो ही करे हैं। वे सत्पुरुष अपने आचरण के द्वारा जा कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर दे में सिगरे लोग फिर वाई को अनुकरण करवे लगे। साधारण लोग धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर काई सत्पुरुष पे विश्वास करके उनकी गोद में सर रख के निर्भय और निश्चिंत सोयो करें। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणिन को अत्यंत विश्वास पात्र हते और जिनके आगे वह मित्र भाव सो अपनों हितैषी समझकर आत्मसमर्पण कर चुके हुए, फिर वह अज्ञानी जनन के साथ में कैसे विश्वासघात कर सके हैं? मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला स्वरूप में रम जायो करे, स्वयं भगवान की हुआ के प्रति आत्मीय बुद्धि हो जायो करे। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियन ने पापन के बहुत से प्राश्चित कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु बिन प्राश्चित सो पापी की वैसी जड़सों शुद्धि नाय हुयो करे जैसी भगवान के नाम को उच्चारण करके हुयो करे। और याने विवश हुए के ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम को उच्चारण कियो है। जा समय याने नारायण इन चार अक्षरन को उच्चारण कियो, वाई समय या पापी के सिगरे पापन को प्राश्चित है गयो। हे अमदूतों, या पापी ने अपने कोटि कोटि जन्म के
पूरे

0: पूरे पापन को प्रायश्चित कर लियो है। अब तुम याकू ले जाबे के अधिकारी नाए रहे, या लिए अब तुम अपने लोक को लौट जाओ। इतने अपमान भरे वचन सुनबे के बाद में यमदूत अपने लोक को लौट गए। वाके बाद अजामिल ने भगवान के पार्षदन को प्रणाम कियो। तभी भगवान के पार्षद अंतर ध्यान है गए। भगवान के पार्षदन के वचनन को सुन के अजामिल के मन में भक्ति को उदय भयो। तब वह अपने सभी पापन को बहुत पश्चाताप भयो और मन ही मन कहवे लगो कि धिक्कार है मुँह पे, धिक्कार है जो एक वैश्या के गर्भ सो संतान उत्पन्न की नी और अपने बूढ़े माँ बाप को घर सो बाहर कर दियो। मैं कितना कृतघ्न हूँ, कितना पापी हूँ। इन्हीं बातन को याद करके वाके मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न भयो और वह हरिद्वार में जाए के मंदिर में आसन पे बैठ के योग के माध्यम सो तपस्या करन लगो। जासो वाकी बुद्धि भगवान के स्वरूप में स्थित है गई। जब माने अपनी नेत्र खोले तब माने देखो कि वही चारों भगवान के पार्षद जिन्हें माने पहले देख रखो वाके सामने खड़े हैं। अजामिल ने बिनके सामने हाथ जोड़ व सर झुकाए के प्रणाम कियो और वहीं गंगा के तट पे अपने शरीर को त्याग कर दियो और वही समय भगवान के पार्षदन को स्वरूप प्राप्त कियो है। तब अजामिल भगवान के पार्षदन के साथ में स्वर्ण में विमान पे बैठ के भगवान लक्ष्मीपति श्री नारायण के निवास स्थान बैकुंठ को चलो गए।
1: भक्त अजामिल अभी आपने जी कथा सुनी और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा में संवेद स्वरण में एक लोकगीत।

हम आपको बता दें आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी मथुरा की प्रस्तुति होगी। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का होगा और इसके प्रस्तुतकर्ता होंगे ओपी सिंह।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

श्री हनुमान जी का जन्म दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य तुला राशि पर थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लग्न अग्नि राशि है, इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस शुभ योग में जन्म लेने के कारण दुखों के समूह को जलाकर राख कर देने की अद्भुत शक्ति श्री हनुमान जी में है। मंगलवार को जन्मे मंगलमय श्री हनुमान जी मंगल भवन अमंगल हारी है। वे मंगल कामना करने वाले अपने किसी भी भक्त का कभी अमंगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी में एक ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। एकांत में ले जाकर रामचरित्र का उपदेश देकर उन्हें संकट मुक्त करते हैं। संकट मोचन हनुमान के रूप में काशी में वे आज भी विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सचमुच संकट मोचन कृपा निधान हैं।

अभी आपने हरिहरन और साथियों के स्वर में पारंपरिक भक्ति रचनाएं सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करने जा रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: केंद्र है। शाम के 6:50 हुए और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: हिंद। अभिषेक भैया
0: हारत नवीन।
1: देखो, इस जो है बरखा बूंदी मैया का होता है कि अपने खेते में यह पानी भर जाता है, तो बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं कि जिनका पानी कम चाहे हो तो बूढ़न चली जाती है और नुकसान हो जाता।
0: रत्ना बहिनी, अगर पंच भैया अपनी खेती पाती के लिए साथ में कृषि विविधीकरण का अपनावत हैं और खेती पाती के साथ में होए वाले काम जैसे डेयरी है, बागवानी है, या इनके साथ में कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, इतन के सब काम करते हैं, तो वही होए वाली नुकसान तेने बच सकते हैं और 2 पैसा जो नगदी के रूप में अपने हाथ में आवत है, तो इसे किसान पंच भैया अपन आमदनी 2 गुनी कह सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कहा थो, और 2 गिनी हमेशा बनी रहे। एक एक खातिन जो है हम पंचन का जो रोज की खबरें हैं वही जरूर मालूम रहे चाहिए, तो सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025-26 में देश में दलहन का उत्पादन बढ़कर लगभग 274 लाख टन पहुंच गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में करीब 17 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का असर दलहन के आयात पर भी पड़ा है। वर्ष 2024-25 में करीब 73 लाख टन दलहन का आयात हुआ था, जो 2025-26 में घटकर करीब 60 लाख टन रह गया है, यानी आयात में लगभग 13 लाख टन की कमी आई है। वहीं दलहन की खेती का रकबा भी बढ़ा है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बेहतर और जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा देने, खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों की सुनिश्चित खरीद उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बढ़ता उत्पादन और घटता आयात दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम का संकेत है।
0: तो रही आज की खबरें और बारी है आज की बातें सुने के। तो आज है खरीफ फसलन में पोषक तत्व कमी के लक्षण, उपचार और इनके बारे में बता रहे हैं जसवीर सिंह भैया, तो चलो सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, मोटे अनाज, दलहनी फसलों में अरहर, उड़द और मूंग, और तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल और कहीं कहीं सोयाबीन की फसल खेत में

0: खड़ी है। जहां फसल खेत में है तो कई बार जो छिपी हुई भूख है पोषक तत्वों की, उसकी कमी के लक्षण दिखते हैं, तो इनका उपचार कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जसबीर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि जो खरीफ फसलें हैं उनमें भूख मिटे, जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं उनका उपचार हो, इसके लिए क्या सलाह देंगे?
1: किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले हम जानते हैं कि खरीफ की कौन कौन सी मुख्य फसलें हमारे प्रदेश में बोई जाती हैं। तो धान्य फसलों की अगर हम बात करें तो धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग और लोबिया। तिलहनी फसलों में तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन है। इसके अलावा कुछ किसान भाई जो हैं वो सब्जियों की खेती करते हैं। अधिकतर फसलों में जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर उस कमी को हम पूरा ना करें तो उसकी वजह से हमारी फसल की उपज और किसान का आर्थिक लाभ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है।
0: अक्सर किसान भाई बहन कुछ खास उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, ज्यादा से ज्यादा डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, जो और पोषक तत्व हैं उनकी कमी बनी रहती है।
1: किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से हमारी फसलों में पाई जाती है। तो पहला मुख्य तत्व हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को किसान भाई बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पुरानी और जो नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें पीलापन आने लगता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। और अगर भारी कमी अगर हो गई तो पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। दूसरा तत्व तो हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस में क्या होता है कि पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पौधों में वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि फास्फोरस की कमी इसमें आ गई है।
0: और पोटाश की?
1: पोटाश की कमी में क्या होता है किसान भाइयों कि किनारे से जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये पत्ते सूख रहे हैं किनारे से या जो है झुलस रहे हैं। इसी तरह से जिंक है। जिंक में क्या होता है किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि धान की फसल में खैरा रोग लगता है, मक्के की फसल में जो है सफेद धारी रोग लगता है, तथा दलहन और तिलहन की फसलों में आपने देखा होगा कि जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आता है और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जैसे मूंगफली और सोयाबीन की फसल में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। फिर आता हमारा एक तत्व गंधक, इसको सल्फर बोलते हैं। सल्फर की कमी से क्या होता है कि ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। फिर आता है बोरोन। बोरोन में क्या होता है कि पत्तियां कटोरी नुमा साइज में यानी कि सिकुड़ने लगती हैं
0: जी,
1: और उनको अगर हम छूके देखते हैं तो उनकी सतह जो है सामान्यतया कठोर दिखाई देती है। फल जो है जैसे खीरा आदि हैं सब्जियां, उनमें टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और खासकर ये टेढ़े मेढ़े होने वाली समस्या जो सब्जियों और फलों में ज्यादातर पाई जाती है।
0: तो खरीफ फसलों में जहां नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं सिंह साहब, तो इसका उपचार इस समय कैसे हो?
1: किसान भाइयों, अगर इन लक्षणों को जो हमने अभी बताए उनको हमने समझ लिया, तो नाइट्रोजन अगर हमें पूरी करनी है तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया दानेदार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने फास्फोरस की कमी को पहचान लिया है तो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। पोटैश अगर हमने कमी को पकड़ लिया है तो पोटैश जो है बुवाई के समय तो हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: और सल्फर का अगर प्रयोग करना है तो 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन जो तिलहन वाली फसलें हैं उनमें हमें ये सल्फर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, 12 से 15 किलोग्राम करनी चाहिए।
0: 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़
1: के हिसाब से
0: बेसल रोज
1: जी।
0: और जैसे आपने नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताए और इनके उपचार के लिए दानेदार यूरिया या नैनो यूरिया प्लस का अगर खड़ी फसल में छिड़काव करना है, तो
1: अब किसान भाइयों हम इस बात पे आते हैं कि हमारी फसल खड़ी हुई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बेसल डोज में ही डालते हैं, उन्हें हम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो यूरिया दानेदार का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नैनो उर्वरक भी बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। नैनो उर्वरकों का प्रयोग करके भी हम जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बोतल होती है 500 मिलीलीटर की, उस 500 मिलीलीटर की बोतल को 125 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए 35 से 40 दिन की अवधि में।
0: और जहां फास्फोरस की कमी के लक्षण दिख रहे हैं खड़ी फसल में?
1: फास्फोरस की कमी के लिए शुरुआत में हमको बुवाई के समय फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए, और अगर खड़ी फसल में हमको लक्षण दिखाई देते हैं तो

0: नैनो डीएपी जो है 500 मिलीलीटर, उसको 125 लीटर पानी में उसी प्रकार से जैसे मैंने नैनो यूरिया का प्रयोग विधि बताई है उसी प्रकार से प्रयोग करके हम फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते
1: किस
0: हैं।
1: अवस्था पर सिंह साहब?
0: नैनो डीएपी है उसको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को एक साथ मिला के 35 से 40 दिन पे हम पहला छिड़काव कर सकते हैं।
1: और दोबारा?
0: दोबारा अगर करना है तो हम 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो फूल आने से पहले की अवस्था पर हमको नैनो उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए।
1: आपने कहा कि पोटाश का बेसल डोज में प्रयोग हो, लेकिन कई बार किसान भाई बहन अपनी खरीफ फसलों में पोटाश का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो खड़ी फसल में इस समय क्या करें?
0: किसान भाइयों, खड़ी फसल में अगर पोटाश के और सल्फर के इन दो तत्वों की कमी के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो सल्फेट ऑफ पोटाश एक आता है 0050, उस पर लिखा होता है, 1 किलोग्राम पैकिंग का ये होता है।
1: जी
0: इसका प्रयोग हमको जो है 1 किलोग्राम के पैकेट को 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिला के करना चाहिए, यानी कि 1% का घोल बना के हमको इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारी सल्फर और पोटाश दोनों ही तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें 50% जो है पोटाश होता है और 17.5% जो है वो सल्फर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है अभी हमारे दो तत्व तो और जो हमने जिनकी पहचान के लक्षण बताए थे, जस्ता में 5 से 8 किलोग्राम मोनो जिंक आती है, उसका हमको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बोरोन की अगर हम बात करें तो इसका 5 किलोग्राम बोरोन 14.5% वाला, उसका 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, बाजार में जिंक और बोरोन दोनों ही नैनो उर्वरकों के रूप में भी आ गए हैं,
1: जी
0: तो इनको हम जो है दोनों ही तत्वों को पानी में मिला के 1 एकड़ में अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारे जिंक और बोरोन दोनों से संबंधित जो लक्षण है उनका उपचार भली भांति किया जा सकता है।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके इफको कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 99 56 39 12 43, 99 56 39 1 2 4 3, 99 56 39 12 43।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में सिंह साहब?
0: किसान भाइयों, हमारा यही कहना है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो उर्वरकों की सही मात्रा का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए, उनके लक्षणों को खेत में जाकर देखना चाहिए और जो उनके लिए समुचित उर्वरक हैं सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: जसवीर सिंह साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना भाई ने देखो जानकारी की बातें हुई और पंच इंतजार कर रहे थे कि लोकगीत जरूर सुनावा जाए उनका, तो आज लोकगीत है खेमटा चांद कबले लुकाई, और स्वर है हीरालाल सैनी व साथी भैयन कैर, तो सुना जाए यू लोकगीत खेमटा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: रत्नबहिनी, तमाम पंच भैया अपन खेती पाती करते हैं, खेते में काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, जिसे उनका यह आशा रहता है कि हमार जो खेती होए, जौन हमार फसल होए बहुत बढ़िया होए, जिससे उनका मुनाफा मिल सके। मतलब कुछ पंच भैया ऐसे होते हैं जो नई नई तकनीकें अपनाए के हैं, नई नई चीज़न का इस्तेमाल करके अपनी खेती का बहुत नीचे स्तर पर ले जाते हैं, जीते उनकी आमदनी दुगनी हुई जाते। यह तन की एक किसान अपने बीच में है, आज हैं भंवर पाल सिंह भैया, जो उन बता रहे हैं मिर्चा और करेला उत्पादन के बारे में। यहाँ इनसे सब पंच भैया सीख लें कि की तनातनी अपनी खेती में नए नए तकनीकन का इस्तेमाल करके एक अच्छे किसान के रूप में यहाँ उभरे हैं। तो सुना जाए आज के किसान।
8: आज हमारे साथ एक ऐसे किसान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव के भंवरपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके खेत में हैं?
9: इस समय ना सब हमारे खेत में 5 एकड़ पे मिर्च लगी हुई है और 10 एकड़ पे करेला, 1 एकड़ पे हमने तुरई लगा रखी है।
8: अच्छा
9: जी,
8: तो मिर्च की कोई खास वैरायटी जो बाजार में डिमांड अच्छी हो?
9: मिर्च में हम लगभग कुछ एरिया में हाइब्रिड वैरायटी करते हैं और ज़्यादा एरिया में हम देसी प्रजातियां करते हैं मिर्च की।
8: कौन कौन?
9: एक काशी अनमोल है और एक G4 है।
8: अच्छा, क्या खासियत महसूस करते हैं इसकी?
9: देखिए, जो हाइब्रिड

0: वैरायटियाँ हैं उनमें प्रोडक्शन तो अच्छा होता है मगर उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो हमारी देसी वैरायटियों में है।
1: और बाजार में उनकी डिमांड?
0: और देसी जो प्रजातियां हैं, जो देसी मिर्च है, उसकी बाजार में मांग हाइब्रिड मिर्च से ज्यादा अच्छी होती है और उसके रेट भी ज्यादा अच्छे होते हैं।
1: तो कब आपने नर्सरी डाली और कब रोपाई की और फसल किस अवस्था में है?
0: हमने नर्सरी अपनी डाली थी 20 मई को और हमारी जो ट्रांसप्लांटिंग हुई है वो हुई है 1 जुलाई से मिर्च की,
1: अच्छा,
0: और करेले की जो ट्रांसप्लांटिंग की है वो 10 जुलाई से की है।
1: तो सीधे बुआई करेले की की?
0: हाँ, करेले की रसा थाले बना करके 6x6 पे हमने सीधे उसमें एक हर थाले में 3 या 4 बीज की रुपाई कर दी है।
1: अच्छा, और मिर्च करेला के अलावा एक सब्जी भी आपने?
0: एक तुरई करते हैं रसा,
1: अच्छा,
0: तुरई, वो भी मचान बीज से।
1: तो मचान पर करेला और तुरई,
0: ये मचान पे होता
1: बरसात
0: है,
1: की वजह से?
0: बरसात की वजह से, और उसमें रसा उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है।
1: ये बताएं कि मिर्च की फसल कैसी चल रही है?
0: मिर्च की हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो गई है, उसमें अभी निराई गुराई चल रही है और फ्लावरिंग 10 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा।
1: मिर्च का अंतरण कितना रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
0: मिर्च का जो देसी प्रजातियां हैं उनका हम रखते हैं लाइन से लाइन 2 फीट और हाइब्रिड का रखते हैं 2 से 2.5 फीट, और पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं 1 फीट और हाइब्रिड की 1 से 1.5 फीट के बीच में रखते हैं।
1: अच्छा, फसल की भूख मिटाने के लिए क्या क्या आपने दिया बुआई के पहले, रोपाई के पहले और खड़ी फसल में?
0: हम लोग सब मिर्च है, करेला है, तुरई है या जो भी अन्य फसलें करते हैं, हम 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद डालते हैं,
1: यानी 100 कुंतल?
0: 100 कुंतल पर एकड़। और इसके बाद जो है कुछ है एनपीके, अब एनपीके की हमने मात्रा थोड़ी कम कर दी है, जो अब स्मार्ट फर्टिलाइजर है, नैनो है, इनका प्रयोग अब ज्यादा करते हैं। फिर भी हमने करीब 1 एकड़ में 25 kg DAP, 20 kg पोटास और 25 kg यूरिया बेसल डोस में और 5 kg सल्फर
1: जी दिया है?
0: दिया है मिर्च और करेले दोनों में ही।
1: और तुरई में?
0: तुरई में भी लगता है यही है रेशियो,
1: रेशियो एक ही है,
0: रेशियो एक ही है।
1: तो फिर आगे भी खड़ी फसल में कुछ?
0: खड़ी फसल में 30 दिन बाद एक बेसल डोस और देते हैं 20 kg पर एकड़ का यूरिया का, और उसके बाद जब हर तुराई होती है उसके बाद देते हैं। और इसके बाद हम इस समय जो सेल्युलर फर्टिलाइजर है NPK 52-34-19-19, नैनो DAP, नैनो यूरिया, इनका ज्यादा उपयोग करते हैं, ब्लास्ट कास्टिंग यूरिया का कम करते हैं,
1: यानी पानी छिड़काव करते हैं,
0: छिड़काव ज्यादा करते हैं।
1: स्मार्ट उर्वरकों में नैनो यूरिया प्लस और नैनो DAP।
0: जी,
1: करेला और तुरई की बुआई कब आपने की और कौन सी वेराइटी आपने चुना?
0: देखिए, करेला में हमने ईस्ट वेस्ट की प्राची है और तुरई में एक हमारी BNR की तुरई आती है, उसी को हमने डाला है।
1: इनकी खासियत क्या है, जिन प्रजातियों को आपने?
0: करेले में नक्शा होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो डिमांड है वो चिकने करेले की ज्यादा है, कहीं पे जैसे हमारा प्रयागराज का एरिया है, कुछ एरिया जहाँ पे कांटे वाला ज्यादा चलता है, हमारे यहाँ चिकने करेले की डिमांड ज्यादा है, तो हमने चिकने डाला है और इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और इसकी हमारा जो कानपुर लखनऊ सराउंडिंग मार्केट है या दिल्ली, वहाँ इसकी डिमांड ज्यादा है।
1: इसकी बुआई आपने कब की, करेला और तुरई की?
0: करेला की बुआई हम जुलाई के पहले हफ्ते में, करेला और तुरई की दोनों की बुआई एक साथ ही की है, ये हमने 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में की है।
1: इस समय क्या स्थिति है और क्या कर रहे हैं करेला और तुरई?
0: इस समय हमारे अपने करेला और तुरई का हमने मचान बना दिया है और हमारा जो है करेला और तुरई मचान में फैल रही है तो, और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
1: जो भी सब्जियां इस समय हैं, चाहे मिर्च है, करेला है, तुरई है, आगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करेंगे खड़ी फसल में?
0: इसमें नक्शा, चूंकि बरसात की फसल है तो इसमें इंसेक्ट बहुत आते हैं, फंगस बहुत आते हैं,
1: कीड़ा और बीमारी दोनों?
0: हाँ, कीड़े और बीमारी दोनों आते हैं, तो इसके लिए हम प्रिकॉशन में ही फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह या नीम ऑयल वगैरह डालते रहते हैं।
1: कितने दिन के अंतराल?
0: ये आप हर 10 दिन, जैसी भी स्टेज हो 10 दिन, या हम देखते हैं कि हमारे पेड़ की स्थिति क्या है
1: जी,
0: अगर कोई उसमें डिसीज नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो वो 10 से 20 दिन भी हो सकता है
1: जी, जैसी निगरानी हमेशा, हाँ, करते रहते
0: हैं। इसकी एक निगरानी हम प्रतिदिन करते रहते हैं।
1: चूंकि पिछले कई सालों से आप लगातार सब्जी उत्पादन

0: से जुड़े हैं। तो ये जो मिर्च है, करेला है और तुरई है, इसमें क्या आंकड़ा लगाए हैं कि कब से कब तक आपको फलत मिलेगी और बाजार भाव अच्छा मिलेगा?
1: मिर्च के रेट तो हमको सितंबर से शुरू होती है और जनवरी तक रेट लगभग ठीक मिलते रहते हैं। जहाँ तक हमारा तुरई और करेला का है, करेला के रेट हमको नवंबर तक, जब तक ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, तब तक करेले के रेट अच्छे रहते हैं। जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो करेले का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मार्केट में उसका कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इसलिए नवंबर तक हम करेला रखते हैं और नवंबर तक ही तुरई रहती है, मिर्च हमारी जनवरी तक जाती है।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
1: 94-157-23-975, 94-157-23-975, 94-157-23-975।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
1: हर किसान से यही कहते हैं कि खेती को आप एक बोझ के रूप में न लीजिए, एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए। और जब आप इंटरेस्ट से खेती करेंगे, हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तो खेती में आपको सब कुछ मिलेगा।
0: भंवरपाल सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो इस समय सब्जियों में आपके पास मिर्च है, मचान पर करेला और तुरई है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी संभावना आपको दिख रही है उत्पादन और बाजार की, और कुल मिला जुला करके आप सब्जी उत्पादन करके खुशहाल हैं, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया देखो पंच भाई बहनों का मौसम की जानकारी बता दो ताकि मौसम के हिसाब से काम कर सके।
4: घटना बहनी तो हमका यू मौसम का हाल जोन मिला है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से मिला है के हिसाब से अगले 7 दिन के जोन वर्षा पूर्वानुमान है वो हम बतावे जा रहे हैं। 25 तारीख यानी कि आज संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 26 तारीख से लगाए के 27 तारीख तक संभाग में कुछ स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। 27 तक लगाए के यहाँ 31 तारीख तक का संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और यू बहनी दोनों जगह ये तनक हाल रहने वाला है।
3: और साथ ही यह जो चेतावनी की बात कही जाए तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 27 से लगाए के 31 तारीख तक कोई चेतावनी नहीं है। 25 और 26 दो दिन पर संभावना है बरखा होगी।
4: बिल्कुल बहनी तो ये तो मौसम का हाल रहा।
3: देखो पंच भाई अपन बात कुछ कहा चाहते हैं या अपन कोई सुझाव देवा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हमारे पंचन के पता जरूर लिख ले। तो पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन है 226001।
4: पंचो यू तो रहा पता ही के साथ साथ में अगर ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है farmandhome@gmail.com।
3: पंच भाई बहनी देखो यू रहा है हम पंचन केर पता और वही के साथ साथ अब चलक हो रही बिरिया तो पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
5: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
6: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा ही उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
5: बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 7,968 करोड़ रुपए से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
7: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के

0: नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों को, 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
0: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी अपनी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला, हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
1: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
3: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लगभग 70 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के 11 विद्यालयों का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर लखनऊ में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मोहम्मदी मिशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ADCP वेस्ट धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस ए मोहम्मदी परंपरागत तरीके और निर्धारित

0: से ही निकाला जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए SDM रुदौली विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी है।
1: पानी निरंतर घट रहा है। पानी घटने से जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं, इत्यादि समस्याएं होती हैं, उसके दृष्टिगत जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशु चिकित्सालय की टीम है, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और वो लगातार गांव में जाकर देखेंगे और लोगों को संक्रामक बीमारियों से होने वाले जो समस्याएं हैं उससे निजात कराने के लिए छिड़काव इत्यादि करेंगे।
0: वहीं मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिले हैं उनके नाम हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो, गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठनलाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और इनके माता पिता, आप हैं उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और उनके परिवारीजन, बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी और तानिया नारंग, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, सेक्टर 67 मोहली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और इनके माता पिता, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, माही मलिक, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जिला रतलाम MP से जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़।

और शुभांगी धाकड़। गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा लाखन, रोहित चंचल, संजना और इनके माता पिता। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शुभांश, शुभांगी, चुन्ना और इनके माता पिता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है दाग। संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार की आवाज़ में दाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत सहर का था, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब जो हमें संदेश मिले उनके नाम हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी काना और मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से, मन भावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा।

और फुनदी भाई भागरी, ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता प्रियाली, पार्थ और उनके परिवारीजन, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई, ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी।

कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। ये संदेश हमें भेजा है काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाडे, भारती, जाह्नवी, वैष्णवी, हर्षल अम्भाडे और उनके परिवारीजन। नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नास, सलमा नास और हाशमी परिवार के सभी सदस्य। जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, बलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सुपान तायडे, आशीष मोहरकर। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन। आइए सुनते हैं आप सबके लिए अनुपमा देशपांडे, सुरेश वाडेकर और साथियों को फिल्म है चांदनी, गीतानंद बख्शी का संगीत निर्देशक शिव हरी।

चांदनी फिल्म का गीत अभी आपने अनुपमा देशपांडे, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ों में सुना, और अब आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार को, गीत सावन कुमार का, संगीत निर्देशक वेदपाल, फिल्म का नाम सौतन की बेटी, पसंद भेजने वाले श्रोता राहट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय और रुद्रा रामेकर, कन्नौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार और उनके परिवारीजन, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, प्रीति वर्मा, रसीरा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू, नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमतारानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा, राजधानी दिल्ली से आर एस स्वीटी, आई के इंदर और स्वीटी छाबड़ा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया, गणेशपुर गंज ढुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सैमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बीबी मुस्कान, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने, ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जयश्री, मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी देवी, कांति भगत, प्रदीप कुमार नायक और उनके मित्रगण और साथी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, अहमदादरीगढ़ भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का, आइए सुनते हैं आप सबके लिए सौतन की बेटी फिल्म का यह गीत।

ये थे कुमार सानू और अलका याग्निक, फिल्म थी बरसात। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। हमें जो संदेश मिलों के नाम है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके परिवारीजन।

वड़ेखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और उनके परिवारीजन। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। ऑरेंज सिटी नागपुर से बिट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजाता और प्रतीक हिबराले। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू। पदमा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसन अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। और अब इसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथी। फिल्म थी डर, गीतानंद बख्शी का था, संगीत निर्देशक थे शिव हरी। और अब सुनते हैं इब्राहिम अश्क की रचना, संगीत निर्देशक राजेश रोशन, गायक स्वर पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के। फिल्म का नाम है बहार आने तक।

ये थे ए आर रहमान और श्वेता शेट्टी। फिल्म थी रंगीला, गीत महबूब का था, संगीत निर्देशक थे ए आर रहमान। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: फिल्म है चांदनी। इस फिल्म के संगीत निर्देशक हैं शिव हरी। पहले सुनिए इस फिल्म में श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी को।
1: चांदनी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में अभी आपने एक गीत सुना। इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी चांदनी। इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक थे शिव हरी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय एमएसएमई और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान

0: के चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि

0: India. And that's all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

ये थे उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म थी कुली नंबर वन। गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे आनंद मिलिंद। अब ये सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को ही। फिल्म है राजकुमार। गीत आनंद बख्शी का, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये थे सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव। फिल्म थी धूम 3। गीत समीर अनजान का था, संगीत निर्देशक थे प्रीतम। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
2: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय पे उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान भी लगा है कि जैसे कि इस बार एलनीनो है तो मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मानसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम है उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना है, उसको कम करना है। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलियंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खास कर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक SOP बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहाँ के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भाई बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
1: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
2: नहीं, देखिए सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है। यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है, हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं। सबसे बड़ी है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहां पर किस तरह की फसलें लगाई जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करने, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी, मगर हम टैकल कर रहे हैं
1: बिल्कुल
2: और अच्छे से कर रहे हैं, और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
1: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
2: देखिए ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए आपके पास तैयारी अच्छी है तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस फसलें भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है ICR के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं। तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल्स आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होंगी, अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा
1: जी।
2: ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज है, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती है जो कि किया जा सकता है। उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की, तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
1: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा, और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गाँव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
2: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो यमुना, सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों को अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, मगर आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहाँ कहाँ थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं, और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपको तालाब से पानी भी मिल जाएगा, आपको जब खेती के लिए भी मिलेगा, आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल, और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी दुरुस्त कर लेंगे, और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं, तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कि कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
2: नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। और वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी, और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थिति हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपका फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है, तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं।

Mantan.

0: रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया। फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सकें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है उसको फोडर मिल रहा है तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं। ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है। और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती हैं, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती हैं या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि बताया, एलनीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके पास हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो ये जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1.5 घंटा चलेगा।
1: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, इवन फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा, तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ।
1: आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद। मीडिया वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात के 10 बजे हैं और अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार। खेल दर्पण के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन खेलों का बड़ा योगदान होता है। यूं तो भारत में खेलों के कई प्रकार सदियों से प्रचलित रहे हैं और आज जिन आधुनिक खेलों को हम देखते हैं वे हमारे पारंपरिक खेलों का ही बदला हुआ स्वरूप है। कैसे हमारे पारंपरिक खेल परिवर्तित होकर नए कलेवर में बदल गए, बता रहे हैं आलोक सिंह।
3: प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा थी, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे अपने गुरु के साथ जंगलों में आश्रम में रहते थे। वहां इन बालकों को वेदों आदि के अध्ययन के साथ ही विभिन्न शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। इनमें प्रमुख घुड़सवारी, तलवारबाजी, शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। पहलवानी, भाला फेंक, योगासन आदि थे। इन खेलों का उद्देश्य बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही युद्ध के लिए तैयार करना था। यही पारंपरिक खेल आज वर्तमान युग में आकर्षक एवं मनमोहक कलेवर में है। पहले का घुड़सवारी आज हॉर्स राइडिंग, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, पहलवानी, कुश्ती, योगासन, जिम्नास्टिक तथा भाला फेंक, एथलेटिक्स आदि पारंपरिक खेल नए अवतरित रूप में है हमारे बीच में। पहले यहाँ अखाड़ों में पहलवानों का जमघट शक्ति प्रदर्शन के लिए लगाया जाता था, वहीं आज कुश्ती की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे अधिक तो जिम्नास्टिक ने अचंभित किया है। कैसे कैसे ये पारंपरिक योग एक खेल के रूप में ढल गए। पहले जहां योग आसनों से शरीर को स्फूर्ति एवं लचीला बनाया जाता था, वहीं आज का जिम्नास्टिक लचीलेपन तथा ग्लैमर का मिश्रण हो गया है। तीरंदाजी जहां पहले शिकार करने एवं युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने के काम आती थी, वहीं आज यह डार्ट पर निशाना लगाने के लक्ष्य किया जाता है। आज का पोलो भी पारंपरिक राजघरानों का मनपसंद खेल था, तब इसकी स्टिक एवं गेंद में काफी अंतर था। डिस्कस थ्रो एवं हाई जंप भी पारंपरिक खेलों का नया अवतार है। भारत में सदैव ही खेल प्रेमी रहा है। यहाँ खेलों का जुनून ऐसा है कि उचित साधन न होने पर भी लोग अपने पास से उपलब्ध साधनों से ही खेल का मजा ले लेते हैं। कुछ एक पारंपरिक खेल उचित ध्यान न मिलने से बहुत ही निम्न दशा में है। ऐसे खेल जो गाँव की गलियों से निकलकर शहरों तक पहुंचे हैं, इनमें कबड्डी मुख्य है। पश्चिम का क्रिकेट भारत की गिल्ली डंडे से काफी मिलता है। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ खेलों के स्वरूप बदलते गए। भले ही आज इनका उद्देश्य भिन्न हो, परंतु इस प्रकार से हमारे पारंपरिक खेल संरक्षित तो हैं, परंतु आवश्यकता है आज भी इसके उचित संरक्षण की। भारतीय पारंपरिक खेल का एक अति उज्ज्वल समय था, तब इसी कारणवश भारत का वर्तमान खेल परिदृश्य इतना सुदृढ़ बन पाया, पर यह प्राचीन खेल की नई पीढ़ी का संज्ञान में तो है।
2: श्रोताओं, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाता है तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए पदक हासिल करता है और अपने देश का गौरव बढ़ाता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में, जिसमें भारत ने कुल 39 पदक जीतकर विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
4: राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम दुनिया का एक प्रमुख बहु खेल आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। इन खेलों की सबसे पहली अवधारणा 1891 में एस्टली कूपर ने सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसका पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ, जिसकी नींव खेल पत्रकार मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने रखी थी। पहले संस्करण में 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में भाग लिया था। समय के साथ इन खेलों के नाम 4 बार बदलाव किए गए। साल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स

रखा गया। 1954 से 1966 तक इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया, लेकिन 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी इसी नाम से चल रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन है जहां पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की तर्ज पर इन खेलों में 1958 से बंकिंगम पैलेस से क्वीन वेटम रिले की शुरुआत की गई थी। यह खेल प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन बन चुका है, जिसमें ओलंपिक और एशियाई खेलों की तरह हर 4 साल में दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल नवाचार और लैंगिक समानता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इन खेलों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा खेल भावना को बढ़ावा देना भी है। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और अन्य खेल शामिल होते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो वे क्षण केवल खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का क्षण बन जाता है। ऐसे ही गौरवपूर्ण क्षण को बार बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में प्राप्त किया है। भारत को पहली बड़ी सफलता 1934 के खेलों में मिली, जब भारतीय पहलवान रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतकर पहला पदक दिलाया। यह भारतीय खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था। भारत को अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए 1958 में वेल्स के कार्डिक में आयोजित खेलों के महान धावक 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवानों ने हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। निशानेबाजी में भी भारत ने विश्व स्तर की पहचान बनाई और अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में रही। पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली को इन खेलों की मेजबानी मिली। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यह आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2010 के बाद से भारत में खेल संस्कृति को नई गति मिली। भारत में खेलो इंडिया के कारण भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा मिली। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान प्राप्त किया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेलों को हटाए जाने के कारण यह आयोजन भारत के लिए काफी सीमित था। इसके बावजूद भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का ये 4th स्थान रहा। सीमित खेलों के बावजूद 2026 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के खेल कौशल, विविधता और उभरती नई प्रतिभाओं के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में प्रतीकात्मक राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। इसे भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्राप्त किया। अब यह झंडा मशाल गुजरात पहुंच चुके हैं, जिससे शताब्दी संस्करण अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2030 के आयोजन में भारत को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा
और अधिक मजबूत होगी। विभिन्न खेलों के अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और पर्यटक भारत आएंगे। इससे भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और अतिथि देवो भव का भाव व्यापक प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से होटल उद्योग, खेलों से जुड़े निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय उद्योग व छोटे व्यापारियों

0: को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: श्रोताओं, प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में ओलंपिक खेलों का विशेष स्थान है, जिसमें दुनिया भर के खेल महारथी भाग लेते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों में जीता हुआ एक पदक खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और इन खेलों का आयोजन अपने देश में होना अर्थात ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना किसी भी देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का अवसर देता है। क्या भारत वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अपना दावा पूरा करने में समर्थ होगा? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के लिए अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना गर्व और सम्मान की बात है। भारत में इस मिशन ओलंपिक 2036 की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं शरद श्रीवास्तव।
2: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इन खेलों के आयोजन के लिए किसी देश के दावे को स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब समिति उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, वहां के सुदृढ़ खेल ढांचे और इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कर पाने की उसकी योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अवसर एक राष्ट्र की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। वर्ष 2036 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए भी भारत के अलावा इंडोनेशिया और टर्की भी दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों के मुकाबले भारत का दावा कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2030 तक इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजबानी का फैसला करते समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक और पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है कि दावेदार राष्ट्र की सामान्य जनता ओलंपिक आयोजन को लेकर कितनी उत्साहित है। इस कसौटी पर भी हमारा देश पूरे अंक हासिल करता है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर नागरिक ओलंपिक आयोजन को लेकर बेहद उत्सुक, सजग और उत्साहित है। हर्ष का विषय है कि हमारे अहमदाबाद शहर को वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, और यह विशाल आयोजन एक प्रकार से ओलंपिक 2036 की मेजबानी का पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। इन दिनों अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह नए खेल परिसरों का निर्माण हो या फिर आवागमन और रिहायश सुविधाओं का विस्तार, ये सारे कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं ताकि राष्ट्रमंडल खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। गौर करने की बात यह भी है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी करके भारत पूरे विश्व को यह संदेश देने में भी कामयाब होगा कि वह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हो चुका है। यह दोनों आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन अब गुजरात का अहमदाबाद शहर देश में खेल संस्कृति के नए केंद्र के रूप में दुनिया के सामने आने जा रहा है। जैसा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित करने को प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व वर्ष 2029 में अहमदाबाद में ही यूथ ओलंपिक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें विश्व भर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। यूथ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दृष्टिगत इन दिनों अहमदाबाद और उसके निकटवर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर निर्माण और विस्तार कार्य जारी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण और विकास, जो कि आने वाले वर्षों में गुजरात प्रांत के खेल ढांचे की आधारभूत संरचना बनने वाला है। इस विशाल परिसर में विभिन्न खेलों के मैदान, टेनिस कोर्ट, प्रशिक्षण केंद्र और खेल गांव समाहित होगा। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रमंडल खेलों के संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार साबित होंगी, और इनमें विस्तार तथा नवीनीकरण करके इन्हें ओलंपिक 2036 के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी काफी दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होते हैं, बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी यह प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं।

0: साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से मेजबान शहर या देश में नए स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का एक ऐसा विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध हो जाता है जो कि खिलाड़ियों की आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसे विश्व स्तरीय आयोजनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं है। रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में इन आयोजनों का विशेष लाभ मिलता है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक अनुमान के अनुसार अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20,000 अतिरिक्त होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि 2030 तक इस क्षेत्र में होटल सुविधाओं का विस्तार होना अनिवार्य है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर जाती है और भविष्य में उसके लिए इस प्रकार के अन्य आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का रास्ता भी खुल जाता है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस गंभीरता का ही परिणाम है कि हमारे देश का खेल बजट वर्ष 2014 तक मात्र 800 करोड़ रुपए का था, जो कि आज 3,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व स्तर की स्पर्धाओं के अपने देश में आयोजन का प्रभाव खिलाड़ियों की सफलता और प्रदर्शन पर भी पड़ता है, क्योंकि अपनी धरती पर अपने दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है और वे मैदान में जाकर बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाते हैं। 1978 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने कुल 28 पदक जीते थे, लेकिन इसके चार वर्ष बाद वर्ष 1982 में जब यह स्पर्धा नई दिल्ली में हुई तो भारतीय एथलीटों ने इसके दोगुने से भी ज्यादा कुल 57 पदकों पर कब्जा जमाया, जिनमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने 50 पदक जीते थे, लेकिन चार वर्ष बाद 2010 में जब यह स्पर्धा भारत में हुई तो हमारे एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक जमा दिया और कुल 101 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर हासिल होता है तो इन खेलों के सफल आयोजन के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में तो निखार आएगा ही, साथ ही हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए भी सर्वोच्च स्तर पर अपने जौहर दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व के इस सबसे बड़े खेल मंच पर पदकों का अंबार लगाकर हमारे खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
1: और श्रोताओं, अब खेल की सुर्खियों के साथ हैं विजय यादव।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भारत की तीन जोड़ियां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गईं। ये तीन जोड़ियां थीं पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानु शाह, महिला युगल में दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े तथा मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले। एकल रैंकिंग में मानव ठक्कर 38वें स्थान पर भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि मानुष शाह उनसे दो पायदान पीछे 40वें स्थान पर और मनिका बत्रा नंबर 51 पर भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ी बनी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन को 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया था। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी एशियाई खेल 2026 से ठीक दो महीने पहले हुई है, जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागाया में होने वाले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि टेबल टेनिस के पावर हाउस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ियों की चुनौती तोड़कर भारतीय खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करके 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। चंद्रिका भोरेस पुजारी 51 किलोग्राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोगत मार्डोनोवा को 5-0 से हराकर, जबकि प्राची ने इंडोनेशिया की दिरा अर्टिका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 19 में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंडर 23 महिला वर्ग में भी भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4

कांस्य पदक हासिल किए। निशा ने 54 किलोग्राम भार में जापान की कोइन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान में हुए जापान ओपन मुकाबलों में टोक्यो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। उन्होंने आक्रामक खेल के दम पर मेजबान खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस सुपर 750 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गईं। 31 वर्षीय सिंधु ने लगातार आक्रमण के साथ साथ बेहतरीन प्लेसमेंट और अहम पलों में संयम रखते हुए 3 बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच का इकलौता गोल फॉरेन टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। इस बार स्पेन ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि व्यक्तिगत अवार्ड्स पर भी अपना दबदबा कायम रखा। टीम के कप्तान और मिडफील्ड के मास्टर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना सके लेकिन उन्होंने 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। इसके साथ ही वह लगातार दूसरी बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 7 क्लीन शीट रखी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को गोल खाने से बचाया। उन्हें गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप के समाप्त होने के तुरंत बाद खेल प्रेमियों के लिए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2 अगस्त तक हुआ। इस बार इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक शुभंकर फिन्नी द यूनिकॉर्न बनाया गया। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 10 खेलों को ही शामिल किया गया था जबकि पिछली बार इसमें कुल 19 खेल थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थे। बर्मिंगम 2022 में भारत ने इन्हीं खेलों में 30 मेडल जीते थे। बर्मिंगम 2022 में 210 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जबकि ग्लासगो में कुल 125 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे। ऐसे में इस बार का प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत के लिए 7 स्वर्ण समेत सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में आए जबकि एथलेटिक्स ने भी हमें कुल 10 पदक जिताए। भारोत्तोलन में 8, जूडो में 4 और पैरा खेलों में कुल 7 पदक मिले। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हमारे हाथ खाली रहे जबकि नेटबॉल और बास्केटबॉल में हमारे देश से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं गया था। बास्केटबॉल के महिला व्हीलचेयर इवेंट में जरूर हमारी टीम थी लेकिन ये टीम एक भी मुकाबला जीते बिना ही पहले चरण से बाहर हो गई। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में सर्वेश कुमार ऊंची कूद, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर, श्री शंकर मुरली लंबी कूद, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप ने चांदी जीती जबकि गुलवीर सिंह 5,000 मीटर, सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, यशवीर सिंह भाला फेंक, तेजस्विनी शंकर डिकातलान और सीमा कालीरमण चक्का फेंक ने कांस्य पदक जीते जबकि 14 मुक्केबाजों में से साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस, अरंधुति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंधाल ने सोना जीता जबकि नरेंद्र बरवाल, जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहाई ने चांदी जीती। 14 सदस्यों वाले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता जबकि यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 12 सदस्यों वाले भारोत्तोलन दल में मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह ने स्वर्ण जबकि राजू मुत्तु पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह ने रजत पदक और विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनगढ़ ने शॉटपुट F57 में स्वर्ण जबकि मोहम्मद बासिल 100 मीटर T47 में रजत पदक के विजेता रहे। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार और महिला शॉटपुट F57 में शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया 166 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। कनाडा 61 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान की रेस में भारत ने बाजी मारी। भारत ने 39 पदक हासिल किए जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा जबकि स्कॉटलैंड ने कुल 13 पदक और नाइजीरिया ने 10 पदक जीते। भारत का माइपे ओपन में 18

0: 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिन्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आईं। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली योंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 2006 में मेंस डबल्स के फाइनल में खेलते समय 17 साल 287 दिन के थे। इसके अलावा तन्वी एशियाई टीम चैंपियनशिप का इकलौता खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी रह चुकी हैं। श्रीलंका के गाल में चल रहे विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 5 दिन अभ्यास किया और 3 दिन अभ्यास मैच खेला, जिसका फल उसे गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 165 रन की जीत के रूप में मिला। 372 रनों के असंभव लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान धनंजय डिसल्वा 59 और पिछले मैच के शतकवीर सोनल दिनुषा 84 ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके भारतीय आक्रमण को रोकने की कोशिश की। पहले कप्तान और उसके बाद डिकवेला के आउट होते ही मानव सुथार ने यहां श्रीलंकाई किले को ऐसे ध्वस्त किया जैसे 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने गाल फोर्ट को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका के विरुद्ध भारत को मिली शानदार जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बूस्टर डोज का काम किया है। श्रीलंका पर जीत के बाद भारत की जीत का प्रतिशत बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि अंक तालिका में भारतीय टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 5वें स्थान पर भी है। इस जीत से पहले भारत का जीत प्रतिशत 48.15 था। इस जीत ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जरूर मजबूती मिली है। विश्व कप हॉकी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर अभिषेक के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक दशक लंबा अजेय अभियान जारी रखते हुए FIH विश्व कप के पूल डी के हाई वोल्टेज मुकाबले में 5-3 से जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभियान ही समाप्त हो गया है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के संक को यही विराम। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे OP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए शरद कुमार का राग मारू विहाग में शहनाई वादन।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सितार और सरोद पर जुगलबंदी। वादक कलाकार हैं सितार पर उस्ताद आबिद हुसैन खां और सरोद पर हैं उस्ताद शहादत हुसैन खां। तबले पर इनके साथ संगत की है मोहम्मद हुसैन खां ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सितार और सरोद पर जुगलबंदी राग जोग में। सितार पर थे उस्ताद आबिद हुसैन खां और सरोद पर थे उस्ताद शहादत हुसैन खां। तबले पर इनके साथ संगत की मोहम्मद हुसैन खां ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's